0: சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के तीन दिन जोन टू सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ. M. नागराज को प्रत्याशी बनाया है।

पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது ஆஜ் சவேரே செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல்.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार, सुप्रभात। सुबह का समय केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि ये नए विचारों, नई उम्मीदों और आगे बढ़ने की नई ऊर्जा भी साथ लेकर आता है। हर उगते सुबह हमें ये भरोसा दिलाती है कि हर दिन अपने भीतर कुछ नया और बेहतर करने की संभावना छुपाए होता है। इन्हीं सकारात्मक भावनाओं और नई उमंगों के साथ हम लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम आज सवेरे। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेनू कटारिया। गुड मॉर्निंग रेनू।
1: गुड मॉर्निंग वैष्णवी, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क ऑन दिस ब्यूटिफुल मंडे मॉर्निंग। And dear listeners, we are going to bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we will be giving you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 8th of June. So let's begin with the news first, Vaishnavi.
0: Ji. Pashchim Bengal Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे।
1: The National Testing Agency NTA has released the exam city intimation slip for the NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on the 21st of this month. The re-examination will be conducted in pen and paper mode from 2 p.m. to 5:15 p.m. across 551 cities in India and 14 cities abroad. The NTA clarified that the exam city intimation slip is not the admit card and is being issued solely to inform candidates about the city where their examination center will be located. The NTA has urged candidates to stay updated through its official websites for the latest announcements regarding the examination and admit card release.
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर GPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331048 और 0112331444। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं।
1: इन जम्मू एंड कश्मीर द

0: டே 4th மெகா லாவெண்டர் ஃபெஸ்டிவல் கன்க்ளூடட் அட் கவர்மெண்ட் டிகிரி காலேஜ் பதர்வா இன் டோடா டிஸ்ட்ரிக்ட் யெஸ்டர்டே வித் என்தூசியாஸ்டிக் பார்ட்டிசிபேஷன் ஃப்ரம் ஃபார்மர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சயின்டிஸ்ட், இண்டஸ்ட்ரியல் பார்ட்னர்ஸ், பாயர்ஸ், செல்லர்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் தி லாவெண்டர் அண்ட் அரோமேட்டிக் பிளான்ட் செக்டர். Meanwhile, in a vibrant celebration of culture, heritage and tourism, the Directorate of Tourism Jammu, in collaboration with District Administration Ramban, organized a one-day Gul Mela yesterday at the picturesque Narsingh area amidst the lush green meadows of Gul subdivision. The cultural festival witnessed an overwhelming response with more than 10,000 people thronging the venue from across Ramban and Riyasi districts. The Mela transformed the scenic destination into a vibrant hub of cultural festivities, attracting tourists, locals, youth and families alike. Organized with the objective of promoting the immense tourism potential of the region, the Mela served as a platform to showcase the rich cultural diversity, traditional heritage and breathtaking natural beauty of Gul and its adjoining areas.
1: मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर विभाग ने कहा है कि आज तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर लू जैसी स्थिति रहेगी।
0: एंड देयर सम वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज दैट वी हैव फ्रॉम नेपाल वैष्णवी। In Nepal, the two-day fourth edition of the Kalinga Literary Festival concluded in Kathmandu yesterday, centered on the theme Beyond Borders, South Asian Literature in a Changing World. The festival brought together literatures, writers, researchers and cultural personalities from across South Asia, including Nepal. The festival featured a wide range of events, including panel discussions, keynote addresses, poetry recitations, musical performances, interactive sessions with authors, book launches, workshops, a cultural evening and programs aimed at fostering cross-border literary collaboration. One of India's leading international literary events, the Kalinga Literary Festival has been organizing its Kathmandu edition since 2022. This year's festival explored how South Asian literature, art and intellectual traditions engage with contemporary global realities, cultural transformations, identity, inclusivity, spirituality and social change. And moving on to sports. In tennis, Germany's Alexander Zverev clinched his maiden Grand Slam title, defeating Italy's Flavio Cobolli in a thrilling five-set final to win the French Open crown at Roland Garros. The victory ended Zverev's long wait for a major title after run-up finish at the US Open in 2020, the French Open in 2024 and the Australian Open in 2025.
1: वहीं रेसलिंग में भारतीय पहलवानों ने कल मंगोलिया में उलान बटार ओपन 2026 में दो और स्वर्ण पदक जीतकर अपना अभियान खत्म किया। भारत की झोली में कुल 16 पदक आए, जिनमें 8 स्वर्ण पदक शामिल है। पुरुषों की फ्रीस्टाइल कैटेगरी में दिनेश धनखड़ ने 125 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, वहीं दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग की श्रेणी में कजाकिस्तान के असिल एताकिन को फाइनल में 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। अन्य भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट में पुरुषों की 74 किलोग्राम श्रेणी में सागर जगलान शामिल थे, जबकि महिलाओं की रेसलिंग में काजल ढोचक, मनीषा भनवाला और नेहा सांगवान ने टॉप स्थान हासिल किया। अब बढ़ते हैं देश के प्रमुख महानगरों की ओर, जहां से जानेंगे शहरों की हलचल और दिन भर की कुछ खास गतिविधियां। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। यमुना नदी की स्वच्छता और संरक्षण को लेकर दिल्ली सरकार 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी भाग लेंगी और नागरिकों के साथ मिलकर स्वच्छ एवं स्वस्थ यमुना के संकल्प को आगे बढ़ाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि यमुना केवल एक नदी नहीं

0: बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: 14 जून को आयोजित होने वाले यमुना तट स्वच्छता अभियान 2026 के अंतर्गत यमुना रिवर फ्रंट के प्रमुख घाटों पर एक साथ स्वच्छता और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इस अभियान में लगभग 500 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठनों के साथ हजारों स्वयंसेवकों की भी भागीदारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सहभागिता से ही स्वच्छ, निर्मल और जीवनदायिनी यमुना का सपना साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष भी यमुना व उसके घाटों को स्वच्छ बनाने के लिए मेरी यमुना मेरा कर्तव्य अभियान चलाया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कार्यक्रम में हजारों स्वयंसेवकों ने भाग लिया था और 12 टन से अधिक अपशिष्ट वेस्ट एकत्र कर उसका वैज्ञानिक निस्तारण किया गया था। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष का अभियान और अधिक व्यापक स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस, दिल्ली नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन सेवाओं और स्वच्छता संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
0: वहीं दिल्ली में सार्वजनिक यातायात सेवाओं के विस्तार के लिए दिल्ली सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इसके अंतर्गत भारत सरकार की पीएमई ड्राइव स्कीम, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट के अंतर्गत पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 2800 एयर कंडीशन लो फ्लोर बस दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान में 1409 मीटर और 1412 मीटर वाली इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इस पहल से दिल्ली में सार्वजनिक यातायात तक पहुंच बेहतर होगी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। ये पहल दिल्ली सरकार के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसका लक्ष्य पूरे शहर में सार्वजनिक यातायात के लिए डीटीसी की बसों की संख्या बढ़ाना और जीरो एमिशन आधारित यातायात संसाधनों की हिस्सेदारी को भी बढ़ावा देना है। दिल्ली में लगभग 400 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जो इसे देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस फ्लीट में से एक बनाती है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक इस संख्या को बढ़ाकर लगभग 7500 इलेक्ट्रिक बसों तक पहुंचाना है। दिल्ली सरकार के इस पहल से गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और लोगों को साफ, सुरक्षित और भरोसेमंद सार्वजनिक यातायात प्रणाली उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ प्रशांत कुमार।
3: एंड मूविंग ऑन टू चेन्नई मेट्रो वैष्णवी, The World Bicycle Day was celebrated by the Central Reserve Police Force, Air Force Awadhi, National Disaster Response Force. Around 530 participants, including officials, participated in the event. The celebration reinforced the message of the Fit India movement, promoting cycling as a sustainable, non-polluting and health-enhancing mode of mobility while encouraging greater public participation in fitness-oriented initiatives. And let's have some news from Mumbai.
0: जी बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर और वर्धा जिलों में संचालित उड़ान मानसिक स्वास्थ्य परियोजना की अवधि को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल उत्तर मुंबई में एक स्मार्ट जनसुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सामुदायिक उपयोग केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।
3: मूविंग ऑन टू बेंगलुरु मेट्रो, द फर्स्ट न्यूज वैष्णवी आई हैव इज Cancer Survivors Run was organized at Kanti River Outdoor Stadium in Bengaluru to raise awareness about cancer and celebrate survivors. The event was organized by Kidwai Memorial Institute of Oncology, Karnataka Medical Education Minister Sharan Prakash Patil flagged off the run and said, Cancer screening camps are being conducted across the state. He encouraged people to adopt health lifestyles, while cancer survivors shared inspiring stories and emphasized that early detection and treatment can help overcome the disease. And Vaishnavi, hamari agli khabar bhi Bengaluru se hi hai. And there's so much that we have on being fit and health, aur hum kaise apne aap ko exercise ke through theek rakh sakte hain. So the second metro news from Bengaluru is focused on the same theme.

0: Karnataka Governor Thavarchand Gehlot said that sports play an important role in personality development. He was speaking at the Governor's Cup Prize distribution ceremony organized by Bangalore Golf Club in Bengaluru. He highlighted that golf teaches patience, concentration, self-control and decision-making skills. He said that success in golf comes through regular practice, positive thinking and discipline. He added that government initiatives like Khelo India and Fit India are encouraging sports across the country. And similar news from Hyderabad Metro Vaishnavi. The Indian Institute of Technology Hyderabad marked World Bicycle Day by securing national recognition from the Fit India movement as a model campus under the Fit India Vehicle Free Campus Initiative. To celebrate the occasion, over 200 students, faculty and residents participated in a cycling rally organized under the nationwide Sundays on Cycle campaign yesterday. Starting at the SNCC Sports Complex, cyclists followed the scenic IITF half marathon route to promote cycling as an affordable, eco-friendly and healthy mode of transportation. And moving on to Vaishnavi, I think you have news from Kolkata Metro.
1: जी बिल्कुल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया है कि प्रधानमंत्री 20 जून को हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के केंद्रीय कार्यक्रम में भाग लेंगे. और श्रोताओं अब बात कर लेते हैं आज के मौसम की. दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. वहीं मुंबई की बात करें तो आज बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के रहने की संभावना है. वहीं कोलकाता में भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ बिजली कड़कने की संभावना है. शहर में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.
0: वैष्णवी, द थ्री मेट्रोज दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेदर. इतना अच्छा मौसम है कि दिल्ली में तो बारिश हो नहीं रही है, तो मुझे लग रहा है कि अगर हम ये वेदर देखें इन तीन सिटीज का तो हमें शायद उनकी सैर पे जरूर जाना पड़ जाएगा. सो बिगनिंग विद चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म. द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 30 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 39 डिग्रीज. बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and the maximum will be around 29 degrees. And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 26 degrees and a maximum of 37 degrees Celsius.
1: अब समय है इतिहास के उन महत्वपूर्ण पन्नों को पलटने का जो आज के दिन से जुड़े हैं. लेकिन उससे पहले रेनू आज के दिन की खास विशेषता जान लेते हैं. आज दो महत्वपूर्ण विश्व दिवस मनाए जाते हैं. आइए पहले इन दोनों के बारे में बताते हैं श्रोताओं को. श्रोताओं आज 8 जून है और आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि ये उस विशाल नीले संसार को याद करने का दिन है जिसके बिना इस धरती को जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती. जी हाँ, आज विश्व महासागर दिवस है. पृथ्वी की 70% से अधिक सतह को ढकने वाले महासागर हमारे जीवन और आजीविका के लिए अनिवार्य है. ये महासागर तापमान को नियंत्रित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निसंग्रहित करते हैं और अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देते हैं. इस दिवस की शुरुआत 1992 में रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में हुई थी और 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 जून को आधिकारिक रूप से विश्व महासागर दिवस घोषित किया था.
0: वेरी ट्रू वैष्णवी, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर ओशंस एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस वर्ल्ड ओशंस डे व्हिच वाज ऑब्जर्वड ऑन द 8th ऑफ जून टू रेज अवेयरनेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस. द थीम इज स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड areas for our blue planet. Our oceans cover over 70% of the Earth's surface, produce more than half of the world's oxygen, regulate the climate, support rich biodiversity and provide livelihoods to millions of people. And our country, India especially, is actively working to conserve marine resources through initiatives like the Deep

0: Ocean Mission, Blue Economy Framework, Coastal Cleanup Drives, Mangrove Restoration, Sustainable Fisheries, and efforts to reduce marine plastic waste. And on this day, the World Oceans Day 2026, citizens are encouraged to adopt eco-friendly practices and contribute to the protection of oceans for a healthier and more resilient future. So we all have to be aware of that.
1: जी बिल्कुल और रेनू हम देखें तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि समुद्र को बचाना दरअसल खुद को बचाने जैसा ही है।
0: बिल्कुल और ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल श्रोताओं आज का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। ये दिन ब्रेन ट्यूमर के प्रति जागरूकता फैलाने मरीजों और उनके परिजनों को सहयोग देने और बेहतर उपचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2000 में जर्मनी के जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने इसकी शुरुआत की थी। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जो चुपचाप पनपती है। अधिकांश लोग शुरुआती लक्षणों को तनाव नींद की कमी या साधारण सिरदर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। दुनिया भर में हर साल 330,000 से अधिक लोगों में ब्रेन ट्यूमर का निदान होता है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है।
0: जी बिल्कुल वैष्णवी, दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट एटलीस्ट एवरी 3 to 6 मंथ्स गेट योर मेडिकल चेकअप्स डन, ताकि आपको पता चले कि अगर आपके किसी ऑर्गन में कहीं पर कोई खराबी है तो उसका जल्दी से जल्दी आप निदान कर सके। सो लेट्स मूव ऑन टू मोर इवेंट्स दैट हैपेंड इन ऑन दिस डे। So beginning with the, which year are we going to take first?
1: 1915 से शुरुआत करते हैं। 1915 में आज ही के दिन लोकमान्य तिलक द्वारा लिखित गीता रहस्य का प्रकाशन हुआ था। और 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था।
0: वेरी ट्रू। मूविंग ऑन टू द ईयर 1948, इंडिया स्टेट ओन्ड कैरियर एयर इंडिया लॉन्च इट्स वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल एविएशन सर्विस विद अ हिस्टोरिक फ्लाइट ऑपरेटिंग बिटवीन मुंबई एंड लंदन।
1: वहीं 1997 में टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने पेरिस में फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीतकर ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया था।
0: In 2002, Serena Williams defeated her sister Venus Williams to win her first French Open tennis title. And in 2004, a rare astronomical event, the transit of Venus across the face of the sun, was successfully observed globally for the first time in 122 years on this day, that is the 8th of June.
1: जी और रेनू अब आज के दिन से जुड़े उन अहम नामों की बात करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी थी।
0: जी
1: आज पुण्यतिथि है भारतीय रंगमंच के उस महान शिल्पकार की जिन्होंने थिएटर को महलों और सभागारों से निकालकर गांव की मिट्टी से की सौंधी खुशबू से जोड़ दिया। हबीब तनवर प्रसिद्ध नाटककार कवि अभिनेता और निर्देशक थे। रायपुर में जन्मे हबीब तनवर ने 1959 में नया थिएटर की स्थापना की और छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के साथ मिलकर एक ऐसी नाट्य भाषा गढ़ी जो ना पूरी तरह शहरी थी ना पूरी तरह ग्रामीण बल्कि दोनों का एक जीवंत संगम थी।
0: जी एंड टॉकिंग अबाउट हबीब तनवीर, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन इंडियन उर्दू प्लेराइट्स, अ थिएटर डायरेक्टर, पोएट एंड एक्टर। And he was the writer of plays such as Agra Bazaar and Charandas Chor. And very true, you have spoken about his work with Chhattisgarhi tribals at the Naya Theatre, a theatre company founded in 1959 in Bhopal. Aur yahi par hi hum thoda sa Habib Tanveer ke muh se khud hi sunna chahenge ki wo kis tarah iske bare mein baat kar rahe hain.

0: कल्चर का मामला बहुत ज्यादा इस तरह का होता है कि जिसमें अपने थिएटर में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, कविता में, जिसका ताल्लुक कल्चर से, उसके इथॉस से, अपने मुल्क की भूभाष से, इन चीजों से उसका रिश्ता इतना गहरा होता है कि किसी और मुल्क में जाके हम कोई खास काम करके पनपना मुझे कम से कम नजर नहीं आया कि हो सकता है, मुमकिन। कभी कभी दिल की अनकही बात गानों में आती है ब्रेस्ट के यहाँ।
1: खिचड़ी खाई, दिन बहलाए, कपड़े फाटे, घर को आए।

0: And you know what, Vaishnavi and listeners, whosoever is wanting to go into theater, I would personally suggest कि एक बार आप हबीब तनवीर को बहुत अच्छे से देखिए, उनके सारे नाटक देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना इंटेंस परफॉर्मेंस वो दिया करते थे अपने प्लेज में. और इसी की वजह से ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही वन सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंक्लूडिंग द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, द जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप, द पद्मश्री इन 1983, द कालिदास सम्मान, द संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एंड द पद्म भूषण इन 2002. हम कितना कुछ उनके बारे में बोल सकते हैं. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर पर्सनैलिटी.
1: जी, अब बात कर ले याद कर लेते हैं कर्नाटक संगीत के उस दिव्य आवाज़ को जो 8 जून 1968 को हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गई, मधुराई मणि अय्यर. 20वीं सदी के पूर्वार्ध के सबसे प्रतिष्ठित कर्नाटक गायकों में से एक थे, जो कल्पना स्वरम, नेरवल और राग आलापना में अपनी अद्भुत दक्षता के लिए जाने जाते थे. उनकी प्रतिभा बचपन से ही इतनी असाधारण थी कि महज 15 साल की उम्र में उन्होंने मद्रास म्यूजिक अकादमी के पहले सम्मेलन में गायन प्रस्तुत किया और सबको अचंभित कर दिया. उन्हें गणकलाधार, संगीत कला निधि, राष्ट्रपति पुरस्कार और ईसाई पिराग्निर जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया. उनकी आवाज में एक ऐसी पवित्रता थी जो सुनने वाले को भीतर तक छू जाती थी. तो आइए आपको सुनाते हैं मधुराई मणि अय्यर की आवाज में एक मनमोहक कर्नाटक प्रस्तुति.

आज जन्मदिन है बॉलीवुड की उस अभिनेत्री का जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में रुफैले पर्दे पर कदम रखा और फिल्म बॉबी से ऐसी धूम मचाई कि पूरा देश उनका दीवाना हो गया। इससे पहले कि हम आपको उनका नाम बताएं, आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: डिंपल कपाड़िया आज 68 साल की हो रही हैं, लेकिन उनकी अदाकारी में वही जादू भी आज भी कायम है। इससे पहले कि हम उनके बारे में और भी आपको आगे बताएं, आइए सुनते हैं उनकी फिल्म क्रांतिवीर का ये एक अनोखा संवाद।
1: तू रक्षा करना जानता है और सजा दिलवाना भी जानता है, न्याय क्या है ये तू अच्छी तरह जानता है, तो फिर हर बात को तू हंसी में क्यों टाल देता है? अरे खुद भी जाग और लोगों को भी जगा।
0: शादी के बाद लगभग 12 साल तक फिल्मों से दूरी बनाई, लेकिन जब 1984 में वापसी की तो सागर जैसे फिल्म से फिर फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता। उनका सफर यही नहीं रुका, बल्कि हॉलीवुड फिल्म टेनेंट में क्रिस्टोफर नॉलन के साथ काम कर उन्होंने साबित किया कि असली प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। आइए इस खूबसूरत सफर

0: और श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और रेनू को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: एंड स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM।
0: नमस्कार।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
6: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
5: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
5: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को

0: आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
5: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
3: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को

0: बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
1: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है,

0: गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की 12 साल की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीब कल्याण और समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंच सके जो दशकों से पीछे छूट गए थे। कोलकाता के जाधवपुर स्टेशन के पास कल रात अवैध फेरी वालों को हटाने की कार्रवाई के दौरान तनाव बढ़ गया। दरअसल वामपंथी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कार्रवाई का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद केंद्रीय बलों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सृजन भट्टाचार्य समेत कई वामपंथी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने आज तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान जताया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. West Bengal is set to implement Ayushman Bharat Pradhan

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फिलीपींस के मिंडानाओ प्रांत में आज तड़के 7.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरिवंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। जवाब में इसराइल ने आज ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इसके बाद से ईरान के कई शहरों में जोरदार विस्फोटों की खबरें हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरान के इस्फहान में 3 विस्फोट हुए हैं।
3: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: इराक के शिया मिलिशिया कटाएब हिजबुल्ला ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों में शामिल होता है तो वे इराक और क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ये चेतावनी समूह ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में दी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलीपींस के ज्वालामुखी विज्ञान और भूकंप विज्ञान संस्थान के अनुसार भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप पर

0: जनरल सेंटोन्स शहर से 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर आया। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी और उत्तरी मुलुक प्रांतों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूटान में बीती रात 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप भारतीय समय के अनुसार रात 11:06 पर भूटान के पुनाखा के पास 26 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद 2.8 और 2.4 तीव्रता के कई झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूटान में आए भूकंप के बाद भारत में सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए। इससे किसी भी तरह के कोई नुकसान की जानकारी नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग आज उत्तर कोरिया की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये 7 वर्षों में पहली उत्तर कोरिया की यात्रा होगी। इस यात्रा से चीन का उत्तर कोरिया पर प्रभाव बढ़ेगा और चीन उत्तर कोरिया को आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट।
1: चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग अपने 2 दिन की यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। विदेशी विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बैठक का द्विपक्षीय संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल दोनों देश अमेरिका के साथ अलग अलग टकरावों के मद्देनजर अपने पारंपरिक गठबंधन को पूरी तरह से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का आर्थिक व मुख्य राजनयिक समर्थक रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आर्मेनिया में संसदीय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और मतगणना जारी है। आर्मेनिया के चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान लगभग 2000 मतदान केंद्रों पर हुआ, जहां 24 लाख से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। प्रारंभिक नतीजों के अनुसार सत्तारूढ़ सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी लगभग 57% वोटों के साथ आगे चल रही है। रूस समर्थक स्ट्रांग आर्मेनिया गठबंधन लगभग 21% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर और पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट कोर्चियान के नेतृत्व वाला आर्मेनिया गठबंधन लगभग 8% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर है। ये चुनाव वर्ष 2023 में अजरबैजान से आर्मेनिया की सैन्य हार के बाद पहला चुनाव है। नेपाल में कलिंग साहित्य महोत्सव का 4th संस्करण कल काठमांडू में संपन्न हुआ। इसका मुख्य विषय सीमाओं से परे बदलते विश्व में दक्षिण एशियाई साहित्य है। इस महोत्सव में नेपाल सहित पूरे दक्षिण एशिया के साहित्यकारों, लेखकों, शोधकर्ताओं और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने उपन्यास कारा के बारे में बताया। उन्होंने साहित्य को समाज, मानवीय अनुभवों और भावनाओं का प्रतिबिंब बताया। कार्यक्रम में अभिनेता और लेखक पीयूष मिश्रा, गायिका इला अरुण, लेखिका प्रतिभा रॉय, लेखक और फिल्म निर्माता राजशेखर, लेखक आचार्य प्रशांत और अन्य कई प्रमुख साहित्यिक हस्तियों ने शिरकत की। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा भारतीय पहलवानों ने मंगोली में चल रहे उलान बतोर ओपन 2026 टूर्नामेंट में 2 और स्वर्ण पदक जीतकर अपना सफल अभियान समाप्त किया। भारत की झोली में कुल 16 पदक आए, इनमें 8 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रमुख स्तंभ। अप्रैल के युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फिलीपींस के मिंडानाओ प्रांत में आज तड़के 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बजट में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष

0: श्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशन का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
3: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said that India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan and the downtrodden. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every

0: மெல்லிசை கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है. श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा. उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे. प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है. उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे. आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक

देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में

0: बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमा सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में चार स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfers, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor. West Bengal is set to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, marking a significant step towards expanding healthcare coverage in the state. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding in New Delhi today in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Under the Trinamool Congress regime, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was not implemented in the state. Trinamool Congress strongman Jahangir Khan was arrested early this morning by the West Bengal police. He was apprehended near the Nepal border. He was reportedly attempting to flee across the border when STF officials, acting on a secret tip-off, intercepted and detained him. The arrest comes in the wake of the Palta Assembly re-election held on the 21st of last month.

0: opportunity to people. He also said that technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor.
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण का अभियान उन गरीब लोगों के जीवन में गरिमा लेकर के आया।
2: जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है इतना पहले कभी नहीं हुआ।
0: Home Minister Amit Shah has said that welfare of the poor is the topmost priority of the government. In a social media post, Mr. Shah said that in the last 12 years, the government connected crores of citizens to banking facilities, financial security and self-employment

0: 24/7 in all major languages and dialects while adhering to highest professional ethics and standards in radio broadcasting. With Aman Yadav, Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
1: In the Philippines, 16 people have been killed after a 7.8 magnitude offshore earthquake hit the Mindanao region of the archipelago this morning. More than 200 people have been injured due to the earthquake that also set off a tsunami. The local authorities are still verifying the extent of the fatalities and damage. In cricket, Afghanistan were 98 for 4 in their second innings on day 3 after being asked by hosts India to follow on in the one-off test at New Chandigarh. Earlier today, India's Manav Sutar snared a 6-wicket haul on a dream debut as Afghanistan were bowled out for a paltry 152. Earlier, India declared its first innings at a commanding 564 for 8. The India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy rainfall over coastal Karnataka till Wednesday. IMD said conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into parts of central Arabian Sea, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu over the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missiles attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashwani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforced follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
4: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण

0: गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
1: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
0: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
4: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
5: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया।

0: वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है, इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति

0: भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: நேரம் 2:30 நிமிடம்.

0: ఆకాశవాణి చెన్నై కేంద్రం. మరికొద్దిసేపట్లో వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఢిల్లీ నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే లవ్లీన్ నిగమ్. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष के विकास यात्रा को रेखांकित किया है. श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा.
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है. इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है.
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र,
4: गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
5: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
6: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही.
7: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास, जनधन, मुद्रा और प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसे कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है. पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है. इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने हैं. तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सांसद पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. श्री रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति हिंसा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित सरकार ने चुनावी वायदों के अनुसार राज्य में विकास और पुनर्निर्माण के कार्यक्रम लागू करने शुरू कर दिए हैं. तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश, भाष्यम रामकृष्ण और चिंतकायला विजय ने आज अमरावती में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया. तीनों उम्मीदवारों ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की उपस्थिति में चुनाव अधिकारी

कुमार वनीता रानी को अपने नामांकन पत्र सौंपे। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित हुआ है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल और प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उसने कहा कि ऑपरेशन के दौरान इसराइल के वायुसेना केंद्रों नेवातिम और तेल नोफ पर हमले किए गए। मीडिया की खबरों के अनुसार इसराइल के हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिसे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने

हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिसे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच में पारी और 300 रन से हरा दिया है। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जवाब में अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई। इसके बाद फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में अफगानिस्तान 112 रन ही बना सकी और भारत ने मैच जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर रहे मानव सुथार को मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Congress President Mallikarjun Kharge shared that 25 political parties attended the meeting. He noted that various issues were discussed and everyone shared their views during the meeting. The Delhi High Court today issued notices to the Centre and the Central Board of Secondary Education CBSE over a PIL challenging the newly introduced on-screen marking system for Class 12 board exam answer sheets. The court has listed the matter for hearing on 12th of June. Benchmark domestic equity indices ended around 1% lower today amid weak global cues. The BSE Sensex shed 719 points to close at 73,524. India registered their biggest ever victory in Test cricket, crushing Afghanistan by an innings and 300 runs on the third day of the one-off in New Chandigarh today. After declaring their first innings at 564 for 8, India bowled Afghanistan out for 152 before lunch on day 3 and enforced the follow-on. And that is the end of this news bulletin.
1: Akashwani. நேரம் 4:10. சென்னை வானொலி 100.1 FM கோல்ட் வழங்கும் தேநீர் நேரம். கேட்பதற்கு முன்,
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
3: இப்ப இந்தியாவோட ஒவ்வொரு கிராமத்திலயும் வீட்டு மாடியோட தோற்றமே மாறி போச்சு. முன்னாடி எல்லாம் மாடியில அப்பளமும் துணியும் தான் காஞ்சிட்டு இருக்கும். ஆனா இப்ப கரண்ட் பில் ஜீரோ ஆயிட்டு இருக்கு. ஒவ்வொரு கிராமமா மக்கள் சோலார் பேனல் போடுறாங்க, நீங்களும் போடுங்க. மத்திய அரசு 78,000 ரூபாய் வரை மானியம் தருது. 30 லட்சத்துக்கு அதிகமான குடும்பங்கள் இதனால பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க. பிரதமரின் சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டம் இப்போதே PM சூரியகர் .gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்.
4: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेना के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
5: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: Eligible officers from central and state governments, autonomous bodies and other eligible organizations may apply through CADA controlling authority. Applications in the prescribed format should be forwarded to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, New Delhi. The extended last date for receipt of applications is 20th June 2026. Candidates are advised to refer to the detailed notification for eligibility, conditions, tenure and application procedures. And the website is www.rural.gov.in. Or you could also go on to www.nirdpr.org.in. The College of Defence Management, CDM Secunderabad, under the Indian Army, has invited applications for 8 civilian posts comprising 1 civilian motor driver ordinary grade, 1 cook, 5 multitasking officers, offers and training, and 1 stenographer grade 2. These positions are being filled through direct recruitment and offers pay scales ranging from level 1 to level 4 as per the 7 CPC. The age limits range from 18 to 25 years for MTS and 18 to 27 years for other posts, with relaxations applicable as per government rules. Applications must be submitted within 30 days from the publication of the notification in the Employment News. Detailed eligibility criteria, reservation details, application forms and instructions available on the official website of the College of Defence Management and the Indian Army. Do refer to www.cdm.ap.nic.in, or you could also go on to www.indianarmy.nic.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar, Rozgar Samachar ke aaj ke ank ke saath main hoon Munish Sharma. आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन परियोजना का कार्यान्वयन कर रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के पद के लिए योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.indianrailways.gov.in. कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का नारियल विकास बोर्ड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ऑडिट अधिकारी एक पद, सिस्टम एनालिस्ट एक पद, प्रशासनिक अधिकारी दो पद, लेखा अधिकारी एक पद, बाजार प्रचार अधिकारी एक पद, निर्यात प्रचार अधिकारी एक पद, वरिष्ठ लेखा परीक्षक एक पद, वरिष्ठ केमिस्ट एक पद और सहायक स्टोर एक पद। पात्रता की नियम और शर्तों, आयु सीमा, आरक्षण और वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार का 30 मई से 5 जून 2026 का अंक। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार जिन्हें चयन प्रक्रिया में तुरंत अपने मौजूदा कार्यालय से कार्यमुक्त किया जा सकता है, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ अपने दस्तावेज भेज सकते हैं। इस पते पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड, केरा भवन, SRV रोड, कोच्चि 682011। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक जल संभर विकास, निदेशक जल प्रबंधन, निदेशक वानिकी, STA जल प्रबंधन, STA वानिकी, STA जल संभर विकास या सामाजिक विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र, STA कृषि एवं बागवानी तथा STA पशुपालन एवं मत्स्य पालन। आवेदन भेजे जा सकते हैं इस पते पर अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, 8वीं मंजिल, प्लांट अथॉरिटी भवन, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली 110012। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट

0: www.nraa.gov.in. राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला भारत सरकार इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है. अनुसंधान एसोसिएट कुल पदों की संख्या 3, कनिष्ठ अनुसंधान फेलो पदों की संख्या 3. आयु, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन पत्र और अन्य नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखिए NDTL की वेबसाइट. वेबसाइट का पता है ndtlindia.com. आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं. आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही. कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा.
0: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का. दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास. इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे याद कुछ ऐसी हस्तियों को है जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि. दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक के साथ आज हूं मैं मुनीष शर्मा और हमारे साथ हैं शगुन चोपड़ा. नमस्कार शगुन.
3: नमस्कार मुनीष, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार. गुड डे एवरीबॉडी. वेल, अ वेरी वार्म वेलकम. दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद मी शगुन चोपड़ा एंड मुनीष. टुडे वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी थ्रिल्ड बिकॉज टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. वेल, यू नो, if you know more about it in a few moments from now, we'll begin with it. And well, we have first a selection of news, and Munish already told you reports, capsules, tributes. So without any further delay, well, let's just get started with the headlines.
0: सबसे पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 साल से सरकार की नीतियों का आधार रहा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया है.
3: इजराइल एंड ईरान ट्रेड फ्रेश मिसाइल अटैक्स ऑन ईच अदर, एस्केलेटिंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट.
0: और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं.
3: एंड इन टेस्ट क्रिकेट, India registers biggest ever victory, defeats Afghanistan by an innings and 300 runs on third day of the one-off test in New Chandigarh. Well, this is our discussion segment, Dateline India, and today it's all about us celebrating 90 years of legacy of Akashwani.

0: Today, it's a truly, truly special day in the history of Indian broadcasting.
1: जी हाँ, आज 8 जून को आकाशवाणी के 90 शानदार साल पूरे हो रहे हैं. आकाशवाणी एक ऐसा नाम जिसने भारतीयों की कई पीढ़ियों को जानकारी दी, शिक्षित किया, उनका मनोरंजन किया और उन्हें आपस में जोड़ा.
0: How true. And 90 years, well, it is a remarkable milestone. And well, now, should we trace back the history, how the journey began? Should we?
1: Of course, we should. We must. दरअसल दोस्तों, 1936 में यही था वो दिन जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर रखा गया ऑल इंडिया रेडियो, जिससे देश के सबसे भरोसेमंद पब्लिक ब्रॉडकास्टर में से एक बनने की नींव पड़ी.
0: And what a journey it has been, Munish, from the era of radio sets in living rooms to today's digital platforms. Akashwani has remained

0: remained a constant companion for millions worldwide.
1: Post-independence, AIR expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Today, Akashvani operates 591 stations, reaching 98% of India's population, broadcasting in 23 languages and 146 dialects. Akashvani's External Services Division broadcast to over 100 countries, projecting India's voice globally and connecting with the diaspora. Living up to its noble ideals of Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai, the New Services Division of AIR strives to provide news and views to every dweller in this vast country, in varied terrains, 24/7, in all major languages and dialects, while adhering to highest professional ethics and standards in radio broadcasting. With Aman Yadav, Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
2: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी श्री विजयपुरम की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस संबंध में आकाशवाणी द्वारा कई गतिविधियां चलाई गईं.
3: देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है. इसी क्रम में आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने 2 जून को अपनी 63वीं वर्षगांठ भी उत्साह पूर्वक मनाई. इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों, कलाकारों और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया तथा आकाशवाणी की गौरवशाली विरासत और समाज में उसके अमूल्य योगदान को याद किया. आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में निकोबारी लोक संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया, जो स्थानीय संस्कृति, परंपरा और संगीत को समर्पित रहा. कार्यक्रम में विभिन्न कलाकारों और विशिष्ट अतिथियों की सहभागिता ने आयोजन को विशेष बनाया. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल से फ्लैग पॉइंट तक एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया. इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा आकाशवाणी की 90 वर्षों की जनसेवा, विश्वसनीयता और गौरवशाली यात्रा को स्मरण करना था. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से अंकित कुलश्रेष्ठ के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद.
2: सारे देश के लिए दिन की शुरुआत उस समय उद्घोषक की जानी मानी आवाजों से होती थी, जो ताजा खबरें, संगीत और जानकारियां सीधे उनके घरों तक पहुंचाते थे.
0: सो मुनीश, अर्लियर बिफोर टेलीविजन, बिफोर द इंटरनेट, आकाशवाणी वॉज द हार्ट बीट ऑफ द नेशन. Voices like Amin Sayani, well, it does ring a bell, gave that heartbeat its rhythm.
4: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: Aap sun rahe hain Vivid Bharati.
6: Mere liye Geetmala sirf ek hit program nahi hai. Woh meri shakhsiyat, mere wujood ka ek hissa hai. Aur aaj tamam itihas is karwa mein shamil ho gaye hain.
2: असल में शगुन आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण सेवा से भी कहीं ज्यादा है. ये इतिहास का गवाह है और पूरे भारत में अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और समुदायों को आपस में जोड़ने वाला एक पुल रहा है.
0: एग्जैक्टली द ब्रिज दैट यूनाइट्स अस ऑल. आकाशवाणी हैज बीन द प्रीमियर प्लेटफॉर्म फॉर इंडियाज फोरमोस्ट वोकलिस्ट्स एज वेल. द लेगेसी इंक्लूड्स लेजेंडरी फिगर्स लाइक MS सुबुलक्ष्मी, भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, सो मेनी ऑफ देम.

0: और दोस्तों, कैसे भूल सकते हैं उस समय की उन आवाजों को जो दरअसल आकाशवाणी का पर्याय बन गई थी, जिनके साथ दिन की शुरुआत होती थी और लगता था दिन भर वो आवाजें हमारे जहन में रहती थी, और जिन्होंने उन्हें एक बार सुन लिया अब भी जी चाहता है फिर बार बार सुने। ऐसी एक आवाज थे देवकी नंदन पांडे साहब। तो आइए सुनते हैं उनके ये एक पुराने साक्षात्कार से कि अंश जो उन्होंने दूरदर्शन को दिया था।
1: जो ड्रामास में मेरा इंटरेस्ट था, तो उन्हीं दिनों से मैं ये तो जानता था कि आवाज में मेरे कुछ दम है
2: जी,
1: मगर इसका आभास मुझे ज्यादा समझ संख्यावानी में हुआ। जब अपना एजुकेशन खत्म करने के बाद मैं लखनऊ गया, एक मामूली नौकरी कुछ तो करने था, तो अगर भी वहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लखनऊ, उसके साथ ही मैं रेडियो में अप्लाई किया और उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। तो एक गिरजा कुमार माथुर और एक इशरत रहमानी दो थे, एक प्रोग्राम असिस्टेंट, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव एट दैट टाइम।

0: उन्होंने मेरी आवाज को सराहा ही नहीं, हाथों हाथ भी लिया और दूसरे ही दिन से उन्होंने मुझे प्रोग्राम्स भी देने शुरू कर दी। तो इस तरह से मैं वहां कैजुअल ड्रामा आर्टिस्ट हो गया।
1: Well, you listen to the voice and you don't even need the visuals here. Such a great voice, such expressive voice. And whether it was important national announcements, educational programs, music concerts, classical music concerts, also rural outreach initiatives, they were widely popular, they still are. Entertainment shows as well, Akashwani has always served the public with dedication.
2: जी हाँ, आज की दुनिया में जानकारी के लिए हम अक्सर स्मार्टफोन और इंटरनेट पर निर्भर रहते हैं, लेकिन क्या होता है जब किसी संकट के समय ये सिस्टम अचानक काम करना बंद कर देते हैं?
1: Then what? That's when radio proves its true strength during natural disasters and emergencies, when electricity, internet services, even communication networks, they are disrupted. Radio often remains the most reliable source of information, Munish.
2: जी हाँ, और यहीं पर आकाशवाणी ने दशकों से अपनी अहम भूमिका निभाई है।
1: Absolutely. Whether it's floods, cyclones, earthquakes, natural disasters or other emergencies, well, Akashwani has consistently provided timely alerts, verified updates and essential public safety information.
2: सच तो ये है दोस्तों कि रेडियो सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, दरअसल ये लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है।
1: True, Munish, and well, let me add here, renowned folk singer Malini Awasthi fondly recalled her long association with Akashwani, describing it as an integral part of her artistic journey. She said a significant span of her life has been closely linked with Akashwani.

0: नमस्कार, मैं मालिनी अवस्थी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की पूरी कहानी यदि आप लिखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आकाशवाणी के हवाले होगा। 90 बरस हुए और आप ये समझ लें कि 50 साल का मेरा जुड़ाव रेडियो से है। मैं 10 बरस की थी, गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर का सेंटर खुला था नया, और तब बाल जगत में सबसे पहले तो बच्चों के साथ और भैया दीदी के साथ बैठ करके बात करते थे, और वो पहला अनुभव था। ये बात हो गई 76 की, और बड़े अच्छे कमाल के ज्ञानवर्धक बातें, बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी होती थी, कोई गा सकता है तो गाए भी, तो आकाशवाणी एक तरह से इल्म भी था। फिर वहां से रेडियो में युववाणी है, फिर अब जनरल है, फिर अब टॉप ग्रेड तक पहुंचना है, एक तरह का वो हमारे लिए सीढ़ी बन गई। गोरखपुर से लखनऊ आकाशवाणी, फिर दिल्ली रेडियो, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में बल्कि भारतवर्ष में कॉन्सर्ट्स में हम जब यात्रा करते अलग अलग शहरों में, तो सबसे खुशी होती थी कि जब नाम के साथ ये जुड़ता था कि अब आपके सामने आ रही आकाशवाणी लखनऊ की कलाकार मालिनी अवस्थी। तो हमारे लिए आकाशवाणी स्टूड लाइक गोल्डन स्टैंडर्ड और व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड।
1: मारे करे जुवा माती बलम घरे ना मोरे नने दी।
2: She takes great pride to be a voice of Akashwani. She said that. Now, Olympian shooter Manu Bhakar also congratulated Akashwani for completing 90 years. Let's listen into her.
3: मैं मनु भाकर आकाशवाणी को 90 साल पूरे होने पर हार्दिक बधाई देती हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा हमें इतना प्रोत्साहित करते हो, हमें इतना मोटिवेट करते हो और हमेशा हमारे लिए पॉजिटिवली बात करते हो। थैंक यू सो मच, हमेशा लुकिंग फॉरवर्ड टू आकाशवाणी।
2: How great! Minority Affairs Minister Kiran Rijiju has extended his best wishes to Akashwani on the occasion of the completion of 90 glorious years.
4: एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि आज पूरा देश आकाशवाणी से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया जा रहा है।
5: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है, आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामनाएं।
4: दोस्तों, आकाशवाणी के 90 साल पूरा होने का जश्न मनाते हुए हम उन श्रोताओं के भरोसे और प्यार का भी जश्न मनाते हैं जो इस सफर का अहम हिस्सा रहे। और भले ही दशकों में टेक्नोलॉजी में बदलाव आया हो, लेकिन हमारा मकसद तो वही है, देश को जानकारी देना, शिक्षित करना और एकजुट करना।
2: Well, here's to 9 decades of excellence, public service and meaningful broadcasting, and here's to many more years of connecting hearts and voices across India.

0: this song is highly appropriate for the situation and for radio, actually. So, now let's shift to the second topic. Today it's World Ocean Day as well.
1: जी हाँ, एक ऐसे विषय पर हम आज बात करने जा रहे हैं जो दरअसल एक बहुत बड़ा और दिलचस्प विषय है और पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद जरूरी है.
0: World Ocean Day. This day is celebrated across the globe to honor our oceans and recognize the incredible role they play in sustaining life on our planet.
1: दोस्तों, आप जानते हैं जब लोग महासागरों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उन्हें खूबसूरत समुद्र तट, लहरें और समुद्री जीव जंतु याद आते हैं, लेकिन महासागर तो इनसे कहीं ज्यादा हैं.
0: Well, it's absolutely true. Oceans cover more than 70% of the Earth's surface and produce much of the oxygen that we breathe, regulate our climate and support millions of livelihoods worldwide.
1: दरअसल सच में इससे पता चलता है कि हमारे महानगरों की सुरक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी क्यों होनी चाहिए.
0: And that's one of the main goals of World Ocean Day. It is actually to raise awareness about the importance of oceans and encourage sustainable actions to protect marine ecosystems.
1: Mahasagar Divas ki hum baat karein to kya aap jante hain ki iski shuruaat kaise hui?
0: Well, I know that, Munish. The idea was first proposed in 1992 during the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil. Leaders and environmental experts, they gathered there to discuss global environmental challenges and solutions.
1: बिल्कुल सही कहा आपने शगुन, लेकिन ये विचार 1992 में शुरू हुआ. लेकिन क्या आपको याद है कि यह आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन आखिर कब बना?
0: It's a good question, actually. Recognizing the need for worldwide cooperation in ocean conservation, the United Nations then officially designated June 8th as World Ocean Day in the year 2008.
1: बिल्कुल, दरअसल एक अहम पड़ाव है. इसने एक बेहतरीन विचार को एक वैश्विक आंदोलन में बदल दिया.
0: Well, exactly. People around the world participate in beach cleanups, educational campaigns as well, other conservation projects also, and community events which are organized to support healthier oceans.
1: कभी कभी लोग सोचते हैं मदद के लिए आखिर मैं क्या कर सकता हूँ. अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे काम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं.
0: And what are those activities? Well, reducing plastic use, disposing of waste responsibly, conserving water every day, supporting sustainable products. These are a few simple steps, very effective ways to protect marine environments.
1: और याद रखिए, नदियों और नालों में जाने से बचाई गई कचरे की हर चीज समुद्र तक पहुंचने वाले कचरे में एक की कमी करती है.
0: How great, Munish. So on this World Ocean Day, let's remember the ocean gives us oxygen, provides food, supports livelihoods and sustain an incredible diversity of life, and in return it does need our care and protection. Every positive action, no matter how small, can help safeguard our blue planet.
1: तो आइए अपने महासागरों को बचाने के लिए हम मिलकर काम करें. आइए अपने महासागरों की सुंदरता और उनके महत्व को समझें और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा का हम संकल्प लें. साथ मिलकर हम सकारात्मक बदलाव की लहर ला सकते हैं.
0: So listeners, listen intently. In our bilingual live phone-in program, Public Speak, tonight at 9:30 p.m., we will bring an insightful discussion on Khet Bachao Abhiyan, restricting fertilizers use and promoting soil health, with Dr. J.P.S. Dabas, former principal scientist, ICAR, Indian Agricultural Research Institute. During the program, you can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers, which I'll tell you right now, 011-233-10481, other one, 011-237-17117, 011-237-17106. So 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044. Or post your questions on X with the hashtag.

0: और दोस्तों आज है जन्मदिन बॉलीवुड की उस अभिनेत्री का जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में रुपेले पर्दे पर कदम रखा और फिल्म बॉबी से ऐसी धूम मचाई कि आज भी लोग उनको भूले नहीं हैं और वो बराबर पर्दे पर सक्रिय बनी हुई हैं और आज 68 वर्ष की वो हो जाएंगी लेकिन उनकी अदाकारी में आज भी जादू वही कायम है। अपने विवाह के 12 साल बाद उन्होंने फिल्म से कुछ दूरी बनाई रखी 12 साल तक कहना चाहिए
1: जी।
0: और फिर 1984 में जब वापसी की तो सागर जैसी फिल्म से जिसे फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से उनको नवाजा गया था उसमें, लेकिन उनका सफर वहीं रुका नहीं और हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म टेनेट में क्रिस्टोफर नोलन के साथ भी नजर आई और उनके इस खूबसूरत सफर को और भी खूबसूरत बनाते गए हैं, उन पर फिल्माए गए कुछ गीत, तो सुनते हैं उन्हीं गीतों की ये एक झलक।

0: So many beautiful songs. A timeless icon of Indian cinema, Dimple Kapadia continues to captivate generations with her grace, charisma and extraordinary talent.
1: और दोस्तों आज है पुण्यतिथि भारतीय रंगमंच के महान निर्देशक हबीब तनवीर की. दरअसल न सिर्फ एक निर्देशक बल्कि नाटककार, कवि, अभिनेता और उसके साथ साथ

0: निर्देशक तो बहरहाल वो थे ही। 1959 में नया थिएटर की उन्होंने स्थापना की और छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के साथ मिलकर एक ऐसी नाट्य भाषा उन्होंने गढ़ी जो न तो पूरी तरह शहरी थी न ग्रामीण, बल्कि दोनों का एक जीवंत संगम था। उनके नाटक आगरा बाजार, जिस लाहौर नहीं विख्या, चरणदास चोर और गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद आज भी समकालीन भारतीय रंगमंच के क्लासिक माने जाते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा चर्चित रहा चरणदास चोर, जिसके दुनिया भर में कई देशों में मंचन हुए। और
1: Well, his remarkable works gave voice to the common people and celebrated India's rich folk traditions as well.
0: जी हाँ दोस्तों, और उन्हें हम आज याद करते हैं अपनी ओर से। और इस कार्यक्रम को दोस्तों अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट, दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: संकरण समारोह का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं SY खान हिंदी में और ज्योति अहलावत अंग्रेजी में। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
1: नमस्कार। दिल्ली स्थित भव्य और ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं SY खान अपनी साथी कमेंटेटर ज्योति अहलावत के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया गया है। ये गौरवपूर्ण अवसर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन वीर सैनिकों, अधिकारियों और जवानों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा, साहस, पराक्रम और अदम्य वीरता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज के इस गरिमामय समारोह में भारत के राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन का भव्य प्रांगण पूरी शान और गरिमा के साथ सुसज्जित है। सैन्य वेशभूषा में उपस्थित अधिकारी, वीरता पदक प्राप्त करने वाले सैनिक, उनके परिजन और देश के अनेक विशिष्ट अतिथि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए यहाँ उपस्थित है। कुछ ही क्षणों में समारोह का औपचारिक शुभारंभ होगा। राष्ट्रगान की स्वर लहरियों के बीच राष्ट्रपति महोदया का आगमन होगा और उसके बाद अलंकरण समारोह की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
2: थैंक यू खान साहब। Namaskar and a very good evening to all our dear listeners tuned in to Akashvani for a live commentary of the prestigious and most honored Defence Ambassadors Ceremony 2026.
1: और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन इस वक्त गणतंत्र मंडप में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री अपना स्थान ग्रहण करते हुए
2: and the गणतंत्र मंडप Rashtrapati Bhavan packed to its capacity. We've just welcomed our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The audience is rising and now taking their seats. And as they were mentioning, that we extend a very warm and joyous welcome to all our dear listeners tuned into national broadcaster Akashvani for the very prestigious Defence Ambassador Ceremony 2026 Phase 1. And a little while ago, the Ganatantra Mandap was buzzing with excitement and effervescence to honor our brave soldiers of our motherland who have sacrificed their all, given their supreme sacrifice. And there are those who have defied death and given a befitting reply to the enemies Devi of the land.
1: Raksha Alankaran Samaroh 2026 ka ayojan Bharat ke Ganatantra Mandap mein kya ja raha hai? उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन का आगमन इस वक्त राष्ट्रपति भवन में हो रहा है। सभी लोगों ने खड़े होकर माननीय उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और इस वक्त माननीय उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन अपना स्थान ग्रहण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री से नमस्कार करते हुए और अपनी जगह बैठते हुए
2: As we had mentioned, back to its capacity, consisting of the family members, the near and dear ones of the medal awardees, as well as a very poignant and

0: Lilting tunes by the military band from the Mahar Regimental Center, Sagar, Madhya Pradesh. The tunes that swell the chest of every Indian across India and around the world. And today is a day of great honor.
1: Mananiya Rashtrapati Mahodaya, aapki anumati ho to raksha alankaran samaro arambh kiya jaye.
2: Raksha Sachiv Shri Rajesh Kumar ne karikram arambh karne ki anumati li Mananiya Rashtrapati se. Aur ab karikram ka vidhivat.
3: शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख छत्तीसगढ़ पुलिस
2: इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य पदक के लिए आमंत्रित किया गया है इस वक्त राष्ट्रपति के सामने
3: 16 अप्रैल 2024 को इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नेतृत्व में एक वृहत अभियान आरंभ किया गया नक्सलियों ने घात लगाकर भीषण गोलीबारी की जिससे लगभग 200 जवानों की सुरक्षा संकट में पड़ गई अधिकारियों ने तत्काल जवाबी रणनीति बनाई जो इतनी साहसिक थी कि नक्सली चकित रह गए 3 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में जब 4 जवान घायल हो गए तो कमांडर ने गोलीबारी में उलझाकर दूसरी तरफ से बड़ी होशियारी के साथ घायल साथियों को सुरक्षित निकाल लिया अभियान में अनेक नक्सली मारे गए यह अभियान छत्तीसगढ़ के अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ और सफल अभियानों में गिनी जाती है रणभूमि में अद्वितीय साहस और विलक्षण नेतृत्व कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट
2: अपने कर्तव्य के प्रति इस असाधारण साहसिक कार्य के लिए इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट को माननीय राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करते हैं
3: इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख
2: और अब इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति के सामने इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख तालियों के साथ
3: लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला 19वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट
0: लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला फ्रॉम द 19th बटालियन ऑफ द सिख रेजिमेंट
3: 13 जुलाई 2024 को नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों के घुसपैठ की सूचना मिलने पर लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला ने घात दस्ता लगाए अभियान के दौरान भारी गोलीबारी ग्रेनेड हमलों के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े और नजदीक से 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया साथियों पर घातक फायर कर रहे 3rd आतंकी का भी खात्मा किया निर्भीकरण कौशल असाधारण साहस के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला
0: अ ब्रिस्क क्विक वॉक अप टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट दैट इज लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला प्राउडली रिसीविंग द मेडल ऑफ ऑनर शौर्य चक्र

0: his bravery, courage, and indomitable spirit. And now,
1: Major Aditya Pratap Singh, Sena Medal, the Rajputana Rifles, 44 Assam Rifles.
2: Major Aditya Pratap Singh ko ab shaurya chakra.
1: Major Aditya Pratap Singh ne Arunachal Pradesh ke seemavarti ilake mein bhari ghuspaith tatha bade hamle ki khabar milne par ek operation aarambh kiya. 72 ghante ki nigrani kar aatankwadiyon ko dhoond nikala. Mahaz 30 meter se bhayankar golibari ke bavjood nirbheek adhikari ne apni jaan ki parwah kiye bina akele hi most wanted ugrawadi ko मार गिराया. अदम्य साहस, राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है. मेजर आदित्य प्रताप सिंह.
2: आदित्य पराक्रम कर्तव्य की पराकाष्ठा से ऊपर निस्वार्थ सेवा और उग्रवादी हमले की निष्काम करने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है. माननीय राष्ट्रपति
1: मेजर आशीष कुमार, the parachute regiment.
0: Major Ashish Kumar from the 7th battalion of the parachute regiment, brusquely, boldly, confidently walking forward, taking a quick thump, a salute.
1: 2 November 2020 ko Anantnag mein aatankwadiyon ke sambhavit marg par nigrani ke dauran Major Ashish Kumar ne do sashastra aatankwadiyon ki pehchan ki. Bhari golibari ke bavjood apni jaan ki parwah na karte hue दोनों आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें एक A++ श्रेणी का कुख्यात आतंकवादी था. असाधारण वीरता और श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है. मेजर आशीष कुमार.
0: मेजर आशीष कुमार फ्रॉम द पैरा रेजिमेंट डॉनिंग द रेड बेरे वॉकिंग पास्ट टुवर्ड्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड प्राउडली द मेडल Shaurya Chakra being pinned on his proud chest. A soldier lives for this day.
1: Sipahi GD Sanjay Tiwari, Sipahi GD Fida Hussain Dar, Kendriya Reserve Police Force.
2: CRPF ke GD Sanjay Tiwari aur GD Fida Hussain Dar ko Shaurya Chakra ke liye aamantrit kiya gaya hai.
1: 2 November 2024 ko ratri 2:45 par Khaniyar thane ke ek mohalle se ek विदेशी आतंकवादी के छुपे होने की सूचना मिली. बिना समय गवाए सिपाही जीडी संजय तिवारी और फिदा हुसैन डार ने लक्षित मकान को घेर लिया. गोलीबारी शुरू हुई. आतंकवादी ने कई ग्रेनेड भी फेंके, जिससे नजदीक से मुकाबला कर रहे दोनों जाबाज सिपाहियों को कई गोलियां और ग्रेनेड के टुकड़े भी लगे. बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वे निडरता से आगे बढ़े और विदेशी आतंकवादी के भारी सुरक्षात्मक पोजीशन में रहने के बावजूद मार गिराया. गोली लगने के बावजूद असाधारण वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है. सिपाही जीडी संजय तिवारी.
2: सिपाही जीडी संजय तिवारी को, जो कि सीआरपीएफ से है, अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है.
1: सिपाही जीडी फिदा हुसैन डार.
2: और अब आदम साहस के लिए सीआरपीएफ के सिपाही जीडी फिदा हुसैन डार को शौर्य चक्र से सम्मानित कर रही हैं माननीय राष्ट्रपति.
3: सहायक कमांडेंट वर्तमान में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक, 26 असम राइफल्स.
0: असिस्टेंट कमांडेंट एंड नाउ डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक फ्रॉम द 26 असम राइफल्स वॉकिंग पास द ऑडियंस एंड नाउ A quick brisk
3: 5 November 2024 को चिंतावाड़ी क्षेत्र में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक के नेतृत्व में एक टुकड़ी को लक्ष्य घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में तैनात किया गया. अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने का प्रयास किया. उस समय डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए भारी गोलाबारी के बीच आतंकवादी के करीब जाकर उसे बेहद नजदीकी से ढेर कर दिया और अपने साथियों को बिना किसी नुकसान के साथ बचाकर भारी मात्रा में युद्ध जैसी सामग्री भी बरामद की. अदम्य साहस, सर्वोच्च नेतृत्व एवं असाधारण सामरिक कौशल का परिचय देने के लिए डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है. डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक.
0: डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक वॉकिंग ब्रिस्कली कॉन्फिडेंटली

0: and now facing our Honourable President to receive his Medal of Honour Shaurya Chakra.
1: 11th Commander Suraj Parashar.
2: लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
1: 6 नवंबर 2024 को लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब घर में फंसे एक आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की, तब उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप कर निडर होकर छिपे हुए दूसरे आतंकवादी पर जानबूझकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने अपने साथी को भी समय पर सूचित किया, परिणाम स्वरूप अपने सेना द्वारा दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। सामान्य कर्तव्य से बढ़कर सेवा के सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर।
2: सामान्य कर्तव्य से बढ़कर सेवा की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
1: सीमैन फर्स्ट क्लास मरीन कमांडो वर्तमान में लीडिंग सीमैन राम गोयल।
0: एंड नाउ सीमन राम गोयल।
1: ऑपरेशन चुंतावाड़ी के दौरान आप भारी गोलाबारी के बीच लक्षित घर के घेराबंदी करने के लिए तैनात थे, जहां दो आतंकवादी छिपे हुए थे। आपने अत्यधिक सामरिक परिपक्वता का परिचय दिया और लक्षित घर में छिपे दूसरे आतंकवादी को पकड़ने के लिए कई बार निडरता से अपनी आड़ तोड़कर सटीक गोलाबारी की। तत्पश्चात आपने अपने साथियों के साथ लक्षित घर में प्रवेश करके निष्प्रभावी आतंकवादियों के शव बरामद किए और युद्ध जैसे सामान भी कब्जे में किए। कर्तव्य से परे सामरिक कौशल, अदम्य साहस और विशिष्ट वीरता के लिए लीडिंग सीमैन मरीन कमांडो राम गोयल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लीडिंग सीमैन मरीन कमांडो राम गोयल।
0: वॉकिंग कॉन्फिडेंटली ब्रिस्कली दिस इज लीडिंग सीमैन राम गोपाल टू रिसीव हिज मेडल ऑफ करेज मेडल ऑफ गैलेंट्री शौर्य चक्र। सैल्यूटिंग एंड हेड
1: सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन CRPF।
2: और अब CRPF के सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र के सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है माननीय राष्ट्रपति के सामने। इस वक्त सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन।
1: जम्मू एवं कश्मीर में भारी हथियारों से युक्त दो विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिली। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन तय योजना अनुसार तलाशी अभियान का हिस्सा थे और उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में लक्ष्य क्षेत्र में रणनैतिक रूप से मोर्चा संभाला और अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल से युक्त आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद असाधारण धैर्य के साथ अपने मोर्चे पे डटे रहे और बड़ी सटीकता के साथ अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर राउंड फायर करके लक्ष्य को बर्बाद किया। इस असाधारण वीरता एवं अदम्य साहस के लिए सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन।
2: सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन तृतीय बटालियन सीआरपीएफ के द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता, अदम्य साहस, कर्तव्य प्राणता, ड्यूटी के प्रति समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति ने पदक से।
1: सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन 20वीं बटालियन सीआरपीएफ।
0: एंड नाउ वॉकिंग टुवर्ड्स आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन फ्रॉम द 20 बटालियन सीआरपीएफ। अ क्विक टर्न एंड अ सैल्यूट।
1: 11 नवंबर 2024 को मणिपुर के जिरीबाम जिले में सशस्त्र विरोधियों ने 20वीं बटालियन के मोर्चे पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन ने तुरंत लगातार एवं सटीक गोलाबारी से विरोधियों पर हमला किया और हमलावरों को रक्षात्मक स्थिति से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लगातार गोलीबारी के बावजूद वे आगे बढ़े और उन्होंने दो कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया और महत्वपूर्ण हथियार भी बरामद किए। चुनौतीपूर्ण युद्ध परिस्थिति में असाधारण वीरता और अदम्य साहस के लिए सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन।
0: असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन बीइंग अवार्डेड द मेडल ऑफ गैलेंट्री शौर्य चक्र एंड आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट नाउ पिनिंग द मेडल ऑन टू द प्राउड चेस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन।
3: राइफलमैन भोजराम साहू 30 बटालियन आसाम राइफल्स।
2: तीन

0: असम राइफल्स के राइफलमैन भोजराम साहू को अगला शौर्य चक्र दिया जा रहा है।
1: 15 नवंबर 2024 आप भारत म्यांमार सीमा रेखा के समीप तैनात घुसपैठ विरोधी दस्ते के स्काउट की भूमिका निभा रहे थे। अपनी टुकड़ी को अचानक एक सघन विस्फोट की चपेट में आया देख व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप निडरता से आगे बढ़े तथा सटीक निशाने से दो विद्रोहियों को घायल कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद आपने एक और विद्रोही को घायल करते हुए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में तीनों विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि की गई एवं भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किया गया। अद्भुत वीरता तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन भोजराम साहू।
0: तालियों की गड़गड़ाहट के बाद राइफलमैन भोजराम साहू शौर्य चक्र लेने के लिए माननीय राष्ट्रपति के सामने।
1: विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह, उड़ान पायलट।
2: विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह एंड नाउ अ फ्लाइंग पायलट। Briskly walking forward, taking a quick brisk turn, a salute to Honorable President, Supreme Commander of the Forces.
1: 21 November 2024 की अंधेरी रात में आपको एक प्रशिक्षु पायलट की उड़ान के मूल्यांकन के लिए विमान कप्तान का दायित्व सौंपा गया। एक मुश्किल मैनूवर का अभ्यास करते समय पिछली कैनोपी के क्षतिग्रस्त होने से केबिन में अचानक एक्सप्लोसिव डीकंप्रेशन पैदा हो गया और कैनोपी के कई टुकड़ों से आपको गंभीर चोटें आई। प्राणघातक एरोमेडिकल चुनौतियों तथा रक्तस्राव के बीच आपने अधिक मानसिक संतुलन बनाए रखा एवं असहनीय पीड़ा के बावजूद घने अंधेरे में वायुयान को स्वयं नियंत्रित करते हुए आबादी से दूर सुरक्षित उतारा। इस बहादुर वायु योद्धा ने न केवल युवा पायलट की जान बचाई बल्कि संभावित दुर्घटना को टालकर आम नागरिकों के प्राणों एवं संपत्ति के साथ साथ राष्ट्र की बहुमूल्य सामरिक संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इस असाधारण कृत्य के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह।
2: ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह, अ राउंड ऑफ क्लैप्स गोइंग अप इन द एयर, रिसीविंग हिज प्राउड गैलेंट्री अवार्ड, द शौर्य चक्र फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड
1: मेजर भार्गव कलिता, कुमाऊं रेजिमेंट 50वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स।
0: कुमाऊं रेजिमेंट 50वीं राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर भार्गव कलिता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
1: आपने अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर में सेवाएं देते हुए अपनी बटालियन के साथ तीन सफल ऑपरेशन में भाग लिया जिसमें तीन आतंकी मारे गए एवं चार ओवरग्राउंड वर्कर्स को जिंदा पकड़ा गया। 2 दिसंबर 2024 को एक आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिलने पर आपने कुशल नेतृत्व करते हुए एक अचूक घात लगाया जिसके फलस्वरूप इस आतंकी को मार गिराया गया। उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता तथा अद्वितीय वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर भार्गव कलिता।
2: मेजर भार्गव कलिता फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट प्राउडली रिसीविंग द मेडल ऑफ ऑनर शौर्य चक्र फॉर अनडॉमटिंग करेज एंड ब्रावाडो।
1: मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह, द पैराशूट रेजिमेंट।
0: और अब 11 पैराशूट रेजिमेंट के मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह शौर्य चक्र लेने के लिए।
1: उत्तर पूर्व में सेवाएं देते समय आतंकियों द्वारा निर्दोष नागरिकों के अपहरण की सूचना मिलने पर आपने अपनी जान की चिंता न करते हुए स्वयं बंधकों को मुक्त कराने का साहसिक निर्णय लिया। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आतंकियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी के बीच आपने अत्यंत नजदीक से एक आतंकी को मार गिराया तथा स्वयं को ढाल बनाते हुए बंधक नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी बीच भागने का प्रयास कर रहे एक और आतंकी को भी आपने घायल कर दिया। आपके कुशल मार्गदर्शन के फलस्वरूप निर्दोष नागरिकों को सकुशल मुक्त कराया गया तथा भारी मात्रा में हथियार एवं युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट रण कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह।
0: विशेष वीरतापूर्ण कार्य के लिए मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह को शौर्य चक्र से।

0: द्वारा माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा
1: मेजर अंशुल बल्टू जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 32वीं बटालियन Assam Rifles.
2: And now coming marching forward, Major Anshul Baltu from the Jammu and Kashmir Light Infantry.
1: 29 अप्रैल 2025 आपने दक्षिण आसाम में उग्रवादियों की मौजूदगी संबंधी सूचना के आधार पर चलाए गए एक घेराबंदी अभियान का नेतृत्व किया. तलाशी के दौरान उग्रवादी भारी गोलीबारी करते हुए घने जंगलों की ओर भाग निकले. आपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनका पीछा किया तथा एक सशस्त्र आतंकी को अकेले ही मार गिराया. भीषण मुठभेड़ के बाद 3 सशस्त्र आतंकियों के शव एवं 3 AK-47 राइफल के अलावा भारी मात्रा में युद्ध सामग्री भी बरामद की गई. असाधारण बहादुरी तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है. मेजर अंशुल बल्टू.
2: The गणतंत्र मंडप echoing away the loud round of applause for Major Anshul Baltu receiving his Shaurya Chakra, a proud moment for the soldier. Saluting our honorable president and a quick turn
1: Major
2: back to the
1: Shivkant
2: arena.
1: Major Shivkant Yadav, Parachute Regiment.
0: A Parachute Regiment ke Major Shivkant Yadav ko Shaurya Chakra.
1: Major Shivkant Yadav ne ek aatank virodhi abhiyan ke dauran दुर्गम और घने जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों का पता लगते ही अपनी टुकड़ी की पुनः तैनाती की. प्रतिकूल परिस्थितियों में घनी झाड़ियों में लगातार पीछा करते हुए एक कुख्यात A++ श्रेणी के आतंकवादी को मार गिराया. अभियान में 2 अन्य दुर्दांत आतंकवादी भी ढेर किए गए. अद्वितीय वीरता प्रेरणादायी सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है. मेजर शिवकांत यादव.
0: तीव्र सामरिक सूझबूझ, विशिष्ट वीरता, आदित्य धैर्य और अदम्य साहस के लिए मेजर शिवकांत यादव को तालियों के गड़गड़ाहट के बीच शौर्य चक्र.
1: सुबेदार PH मोसेस 1 असम राइफल्स.
2: And now, Subedar P.H. Moses from the 1st Assam Rifles, proudly marching, slow measured march, a quick salute.
1: 14 May 2025 को एक विशेष अभियान के दौरान गश्ती दल के सेकंड इन कमांड के रूप में अचानक छिपे उग्रवादियों की गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी पूरी टुकड़ी खतरे में आ गई. अपने फायर से उग्रवादियों को दबाव में रखते हुए अत्यंत जोखिम उठाकर पहले एक और फिर दूसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया. असाधारण शौर्य, विलक्षण सैन्य कौशल और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है. सुबेदार PH मोसेस.
2: सुबेदार PH मोसेस, a proud soldier of the defense forces of Maa Bharati, our motherland India. Receiving his pride medal of honor, saluting and heading back.
1: Major Vivek, the mechanized infantry, 42 Rashtriya Rifles.
0: Mechanized infantry 42 Rashtriya Rifles ke Major Vivek ko Shaurya Chakra ke liye aamantrit kiya gaya hai.
1: 15 May 2025 ko Pulwama zile mein ghera aur talashi abhiyan ke dauran Major Vivek ki tukdi aatankwadiyon ki goli bari ki chapet mein aa gaya. Aapne आतंकवादियों के भागने के प्रयास को विफल किया तथा नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की. जोखिम उठाकर कंक्रीट की छत के नीचे छिपे A++ श्रेणी के आतंकवादी को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया. विशिष्ट वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व, अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है. मेजर विवेक.
0: अत्यंत वीरता, नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक कुशलता और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण के लिए मेजर विवेक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है.
1: राइफलमैन मांगलिम सांग वाईफाई 3 असम राइफल्स.
2: राइफलमैन मांगलिम सांग वाईफाई फ्रॉम द 3rd असम राइफल्स. रेडी टू रिसीव.
1: 9 जून 2025 को राइफलमैन मांगलिम सांग वाईफाई भारत म्यांमार सीमा पर

0: पैठ विरोधी अभियान के अग्रणी स्काउट थे। आपने कई आतंकवादियों को घुसपैठ के इरादे से आगे बढ़ते देखा। आपने पहले ही हमले में दो आतंकवादियों को मार गिराया और गोली से घायल तीसरे आतंकवादी को भी उसी शाम घने जंगलों में ढूंढकर मार गिराया। अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई,
1: राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई बीइंग अवार्डेड द शौर्य चक्र, डिस्प्लेइंग नर्व्स ऑफ स्टील।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार, पैराशूट रेजिमेंट।
2: 21 पैरा विशेष दल के लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य श्री कुमार को शौर्य चक्र दिया जा रहा है।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य श्री कुमार ने सीमावर्ती इलाके में एक किले बंद विद्रोही शिविर पर सटीक हमला करने के लिए व एक कुख्यात विद्रोही समूह के नेतृत्व को बेअसर करने के लिए मजबूत खुफिया नेटवर्क स्थापित किया, कड़े धोखे के प्रोटोकॉल लागू किए और कई उच्च जोखिम वाले टोही अभियानों में भाग लिया जिससे 9 विद्रोही मारे गए। निडर नेतृत्व और विशिष्ट वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य श्री कुमार,
2: उत्कृष्ट व्यवसायिक क्षमता, निडर नेतृत्व और प्रतिकूल परिस्थितियों में विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य श्री कुमार और ये शौर्य चक्र प्रदान किया गया है।
3: कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर, पैराशूट रेजिमेंट।
1: Briskly marching forward in measured steps, this is Captain Yogendra Singh Thakur from the 6th Para Regiment.
3: Jammu even Kashmir ke ilake mein Captain Yogendra Singh Thakur apne nigrani daste ke saath tainat the jab unhe lagbhag 300 meter ki duri par kuch agyat vyaktiyon ki harkat dikhai thi. Sangdit vyaktiyon ke bhagne aur anapekshit nuksanon se bachane ke liye ve ghane kohre mein atal rahe. अचानक आतंकवादियों ने उनकी टुकड़ी पर भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। इस स्थिति में वे रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े और बेहद नजदीकी मुठभेड़ में भीषण गोलाबारी के बीच एक आतंकवादी को मार गिराया। उनकी अभूतपूर्व वीरता, युद्ध कुशलता एवं दृढ़ संकल्प के लिए कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर
1: On his unprecedented valor, fighting spirit, dedication, Captain Yogendra Singh Thakur is awarded the Shaurya Chakra. And now a salute and turn.
3: Subedar Shamsher Singh, Parachute Regiment.
2: Aur char para vishesh dal ke Subedar Shamsher Singh इस वक्त शौर्य चक्र लेने के लिए राष्ट्रपति के सामने।
3: सुबेदार शमशेर सिंह को श्रीनगर जिले के एक इलाके में 3 उच्च कोटि आतंकवादियों को खोजने एवं मार गिराने के अभियान में स्क्वाड कमांडर के रूप में नामांकित किया गया था। खोजने के गतिविधि के दौरान वे अचानक भीषण गोलाबारी के चपेट में आ गए। युद्ध क्षेत्र में संयम का परिचय देते हुए उन्होंने तुरंत उस स्थान की पहचान की जहां एक आतंकवादी छुपा हुआ था और खुद को दुश्मन की सीधी गोलाबारी के बीच स्थापित किया। आगामी निकट मुठभेड़ में दुश्मन की गोलाबारी का सामना करते हुए वे आगे बढ़े और एक सटीक और घातक हमला करके एक आतंकवादी को मार गिराया। गोलाबारी के बीच अद्वितीय साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सुबेदार शमशेर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सुबेदार शमशेर सिंह,
2: कर्तव्य के प्रति समर्पण और समर्पण का प्रदर्शन करने के लिए सुबेदार शमशेर सिंह शौर्य चक्र लेते हुए
3: लांस नायक, वर्तमान में नायक राहुल सिंह, पैराशूट रेजिमेंट।
1: एंड नाउ लांस नायक,
3: श्रीनगर के एक जिले में एक आतंक विरोधी ऑपरेशन में नायक राहुल सिंह को एक प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। अटल साहस, बेमिसाल फील्ड क्राफ्ट एवं संकेतों का पीछा करते हुए उन्होंने आतंकवादी ठिकानों का खोज निकाला एवं तुरंत अपने स्क्वाड कमांडर को सूचित किया। आगे बढ़ते समय प्रख्यात खतरे का एहसास होने पर उन्होंने आतंकी ठिकाने के बारे में अपने दस्ते को सूचित किया और निकटतम आतंकवादी पर सटीक गोलाबारी करके उसको मौके पर ही मार गिराया। उनकी वीरतापूर्ण कार्यवाही, दृढ़ बहादुरी और असाधारण लड़ाकू क्षमता के लिए नायक राहुल सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है।

0: Rahul Singh.
1: Naik Rahul Singh marching ahead for his Medal of Honor, the Shaurya Chakra. This is courage under fire, a fine display of what our soldiers vow to pledge.
0: Rifleman Dhubra Jyoti Datta, 10th Assam Rifles.
2: 33 Assam Rifles ki rifleman Dhubra Jyoti Datta vishwas ke sath aage badhte hue.
0: 19 सितंबर 2025 को राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता को इम्फाल घाटी में एक बाढ़ राहत अभियान में वाहन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वाहन के पिछले हिस्से में 8 और जवान भी बैठे थे। तभी अचानक अज्ञात विद्रोहियों ने घात लगाकर वाहन पर हमला किया। राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता को स्वयं जांग, छाती, कंधे और बांह पर कई गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वाहन को मृत्यु क्षेत्र से बाहर निकाला और अपनी त्वरित कार्रवाई से पिछले हिस्से में सवार सभी 8 साथी सैनिकों की जान बचाई। अपने उत्कृष्ट एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता
2: रक्षा अलंकरण केवल सम्मान प्रदान करने का अवसर नहीं बल्कि ये उन वीर गाथाओं को राष्ट्र के सामने नमन करने का अवसर है जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से भारत की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा।
0: लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए।
1: Women empowered are not behind. We have now two women, Lieutenant Commanders Dilnake and Lieutenant Commander Rupai.
0: आप दोनों को नाविका सागर परिक्रमा 2 के लिए चयनित किया गया था जो INSV तारिणी पर एक अग्रणी द्विसदस्य विश्व परिक्रमा अभियान था। 2 अक्टूबर 2024 से 29 मई 2025 के बीच आपने भारतीय, प्रशांत, अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों से होते हुए 25,600 समुद्री मील से अधिक की यात्रा की, जिसमें आपको एकांत, अत्यधिक मौसम और तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। आप पॉइंट मीमो तक नौकायन कर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। अभियान के दौरान जीवन झकझोर देने वाली परिस्थितियों के बावजूद आपने अदम्य साहस, उत्कृष्ट नौकायन कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया। इस अभूतपूर्व अभियान में असाधारण वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके
1: A big round of applause for the women soldier from the Indian Navy receiving her Shaurya Chakra proudly.
0: Lieutenant Commander Rupa A.
1: Lieutenant Commander Rupa A. Now in front of our Honorable President, proudly receiving her Medal of Honor, the Shaurya Chakra, daring the weather and being the first Indians to reach Point Nemo.
3: शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र कल को शांक लांबा रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी
2: और अब वीर चक्र दिए जाएंगे। वीर अधिकारी पूरे आत्मविश्वास और गौरव के साथ राष्ट्रपति महोदया के समक्ष
3: कल को शांक लांबा ने अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए एक विशेष उपकरण बैटरी को प्रतिकूल परिस्थितियों में इंडक्ट किया। बेहद कम समय में नए क्षेत्र में उत्कृष्ट युद्ध क्षमता सुनिश्चित करते हुए दिए गए लक्ष्यों का सफल विश्लेषण किया एवं एक समन्वित सटीक फायर मिशन द्वारा कई आतंकी शिविरों को बर्बाद करने में अहम योगदान दिया, जिसमें कई आतंकियों का सर्वनाश किया गया। दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर आप अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे तथा एक गन से दूसरी गन पर जाकर निरंतर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। असाधारण नेतृत्व क्षमता तथा युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। कल को शांक लांबा।
2: भारतीय सेना की परंपरा के अनुसार गोलीबारी के बीच असाधारण वीरता, पराक्रम और साहस का प्रदर्शन करने के लिए कर्नल कोशांक लांबा को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
3: कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, उड़ान पायलट।
1: एंड आवर सेकंड वीर चक्र ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, the flying captain from the Indian Air Force.
3: एक सैन्य अभियान के दौरान शक्तिशाली लड़ाकू विमानों से सुसज्जित आपके स्क्वाड्रन को शत्रु के कुछ ठिकानों को बर्बाद करने का जिम्मा सौंपा गया। निरंतर बदलते खतरों के बीच अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना इस पराक्रमी वायु योद्धा ने अग्रिम पंक्ति में रहकर कई

0: डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स मिशन का नेतृत्व किया तथा निर्धारित लक्ष्यों को नष्ट करने के साथ साथ अपने साथी पायलट्स को सुरक्षा प्रदान की। आसमान में रहते हुए आपने ऑपरेशनल वेरिएबल्स के अनुरूप कई साहसिक निर्णय लेते हुए तीन स्थानों से संचालित जटिल वायु अभियानों को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। अद्वितीय उड़ान कौशल, अटूट कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू।
1: ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू मार्चिंग फॉरवर्ड टू रिसीव हिज मेडल शॉर्ट वीर चक्र फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
0: ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा शौर्य चक्र उड़ान पायलट।
2: और अब उड़ान पायलट मनीष अरोड़ा को वीर चक्र दिया जा रहा है।
0: आपको कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए एक जोखिमपूर्ण अभियान का दायित्व सौंपा गया। शत्रु का वायु क्षेत्र अति आधुनिक रडार की सतत निगरानी में था तथा लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस दुश्मन के लड़ाकू विमान इसकी सुरक्षा में निरंतर तैनात थे। ऐसी घातक परिस्थितियों में हथियार प्रक्षेपण का लॉन्च विंडो बेहद सीमित होने के बावजूद इस शूरवीर अधिकारी ने शत्रु की मारक सीमा के भीतर घुसकर लड़ाकू विमानों के प्रचंड प्रहार से निर्धारित लक्ष्यों को बर्बाद किया और अपने साथियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। अद्भुत पराक्रम, असाधारण नेतृत्व क्षमता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा शौर्य चक्र।
2: ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा शौर्य चक्र को वीर चक्र से सम्मानित कर रहा है। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच माननीय राष्ट्रपति ने ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा को।
0: ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी उड़ान पायलट।
1: एंड नाउ Group Captain Animesh Patni, dressed in impeccable blue uniform, coming forward.
0: एक अग्रिम एयरफील्ड पर सरफेस टू एयर मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालते हुए आपने एक चुनौतीपूर्ण अभियान में दो फायरिंग यूनिट्स का नेतृत्व किया जिसमें शत्रु के कई हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा गया। शत्रु को भ्रमित करने के लिए आपने लगातार अपनी यूनिट का स्थान परिवर्तित किया एवं भीषण गोलाबारी के बीच अपने सैनिकों तथा उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की। आपके सजग मार्गदर्शन में एक संदिग्ध शत्रु गुप्तचर को भी पकड़ा गया। असाधारण साहस तथा कर्तव्य परायणता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी।
1: ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी रिसीविंग हिज वीर चक्र। एंड एज दे से डू नॉट गो वेयर द पाथ लीड्स, गो वेयर देयर इज नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल। गणतंत्र मंडप एकोइंग
0: उड़ान पायलट
1: विद अप्लॉज।
2: और अब ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा को आमंत्रित किया गया है जो कि उड़ान पायलट है।
0: आपने एक खतरनाक सैन्य अभियान के अंतर्गत दुश्मन के दो महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करने के लिए अनस्कॉटेड स्ट्राइक पैकेज के मिशन लीडर के रूप में उड़ान भरी। शत्रु द्वारा जमीन और आसमान से निरंतर किए जा रहे प्राणघातक हमलों, विमान और शस्त्र प्रणाली में आई तकनीकी बाधाओं तथा प्रतिकूल मौसम के मध्य इस पराक्रमी वायु योद्धा ने असाधारण संयम तथा रण कौशल का परिचय दिया। रात के अंधेरे में मौत को चुनौती देते हुए शत्रु के सुरक्षा कवच को भेद कर निर्धारित लक्ष्यों को नेस्तो नाबूद किया और अभियान का गौरव बढ़ाया। इस अद्भुत पराक्रम के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा।
2: असाधारण साहस शौर्य कृत्य के लिए ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
0: विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा उड़ान पायलट।
1: विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा फ्लाइंग पायलट फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स।
0: आपको सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा दुश्मन की शस्त्र प्रणालियों से संरक्षित लक्ष्यों पर निर्णायक प्रहार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। शत्रु के रडारों की निगाहों से बचते हुए आपने अत्यंत निम्न ऊंचाई से अपने दल के साथ उड़ान भरी। जो ही अभियान निर्णायक चरण में पहुंचा आपको दुश्मन की वायु रक्षा विमानों तथा जमीनी हथियारों से जवाबी हमले का सामना करना पड़ा।

0: जीवन पर मंडराते गंभीर खतरे के बीच आपने असाधारण नेतृत्व कौशल तथा अद्भुत धैर्य के साथ अपने प्रभावी फायर से निर्धारित ठिकानों के साथ साथ दुश्मन के नापाक मंसूबों का भी विनाश किया। इस शौर्यपूर्ण अभियान के लिए आपको वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है, ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा।
1: एंड अनदर लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड करेज डिस्ट्रॉइंग द डेजिग्नेटेड एनिमी टारगेट रिसीविंग हिज वीर चक्र।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट 1988 स्वतंत्र मीडियम बैटरी।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट अब वीर चक्र लेने के लिए माननीय राष्ट्रपति के साथ।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट ने कमान अधिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में उच्च कोटि के संचालन कौशल का परिचय देते हुए लक्षित आतंकवादी कैंप का संपूर्ण विनाश कर सफलता प्राप्त की। अभियान की तैयारी के दौरान उन्होंने उपग्रह चित्रों का गहन विश्लेषण कर आतंकी कैंप की सटीक पोजीशन व पहचान सुनिश्चित की। पुनः मिले आदेश पर एक और महत्वपूर्ण सामरिक लक्ष्य भी नष्ट किया। रणनीतिक सूझबूझ व अदम्य साहस के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट।
3: तालियों की गड़गड़ाहट के बीच असाधारण बहादुरी, अधिक नेतृत्व और अतुल्य साहस के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट वीर चक्र लेते हुए माननीय
2: स्क्वाड्रन लीडर वर्तमान में विंग कमांडर सार्थक कुमार उड़ान पायलट।
1: स्क्वाड्रन लीडर नाउ विंग कमांडर सार्थक कुमार फ्लाइंग पायलट proudly marching forward, a quick turn and salute to our supreme commander,
2: squad leader Sarthak Kumar ne mission planning cell ke pramukh sadasya ke roop mein anek deep strike mission ki yojana aur samanvay mein nirnayak bhumika nibhai va uch jokhim bhare long range stand off strike missionon mein prabhavi yogdan dete hue safaltapurvak sampann kiya और शत्रु की महत्वपूर्ण हवाई संरचना को नष्ट करने में अत्यधिक मदद की। असाधारण साहस एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, विंग कमांडर सार्थक कुमार।
1: विंग कमांडर सार्थक कुमार फॉर प्लेइंग अ पिवोटल रोल इन द हाई स्टेक लॉन्ग रेंज ऑफ स्ट्राइक मिशन विद एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड हीरोइज्म receiving his Veer Chakra.
2: Squadron leader Siddhant Singh Udaan Pilot.
3: Udaan Pilot Squadron leader Siddhant Singh ko Veer Chakra ke liye aamantrit kiya gaya hai.
2: Squadron leader Siddhant Singh ne ek atyant jokhimpurn vayu mission mein shatru ki majboot air defense pranali ko bhedte hue kam uchai par radar se bachte hue pravesh kar lakshya par prabhavi hamla kiya और शत्रु की वायु रक्षा संरचना को काफी गंभीर क्षति पहुंचाई। तीव्र खतरे के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। अदम्य साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह।
3: असाधारण साहस और स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह माननीय राष्ट्रपति से पदक ग्रहण करते हुए वीर चक्र आपको दिया गया।
2: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक उड़ान पायलट।
1: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स नाउ रेडी टू रिसीव हिज अवार्ड वीर चक्र।
2: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक ऑपरेशन के दौरान मध्य रात्रि में एक अनस्कॉटेड स्ट्राइक पैकेज के डेप्टी मिशन लीडर के रूप में उड़ान भरी। लक्ष्य नवीनतम शक्तिशाली वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली से सुसज्जित था। विरोधी एयर स्पेस में निर्बाध रडार कवर के बावजूद खतरों से भरे घेरे को भेद कर विरोधियों की घातक रेंज में होने के बावजूद आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र और शत्रु के इलाके में एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया। अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल, विलक्षण सैन्य प्रतिभा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक।

0: is Van Mullick. Echoes of jubilation in the hall. A proud moment for Squadron Leader Rizwan Mullick receiving his Veer Chakra for undefeated spirit.
1: Vartaman mein Squadron Leader Arshveer Singh Thakur, Udan Pilot.
2: Mananiya Pradhan Mantri, Uparashtrapati aur Tino Senaon ke Adhyaksh is waqt apne sainikon ki shaurya gatha sunte hue.
1: Flight Lieutenant Arshveer Singh Thakur, ऑपरेशन की मध्य रात्रि में एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए उड़ान भरी। भयावह दायरे को भेदने का अवसर सीमित था, आक्रमण करने का लॉन्च विंडो भी सीमित था। विरोधी के भारी संख्या में होने के बावजूद रात्रि में बेहद नीचे उड़ते हुए रडार को चकमा देकर साहस के साथ शत्रु के सामरिक लक्ष्य को पूरी तरह से ध्वस्त किया। उनके आक्रमण ने विरोधी पर विध्वंसकारी प्रभाव ऐसा डाला जिससे विरोधी उनका हमेशा के लिए सामना करने में अक्षम हो गए। असाधारण साहस और विलक्षण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर।
2: शौर्यपूर्ण कार्य के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट वर्तमान में स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर माननीय राष्ट्रपति से वीर चक्र लेते हैं।
1: नायब सूबेदार सतीश कुमार, फोर्थ बटालियन द डोगरा रेजिमेंट।
3: एंड नाउ नायब सूबेदार सतीश कुमार फ्रॉम द फोर्थ बटालियन डोगरा रेजिमेंट प्राउडली मार्चिंग फॉरवर्ड।
1: नियंत्रण रेखा पर जब हमारी चौकियां भीषण तोप और मोर्टार गोलीबारी की चपेट में आई तो स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नायब सूबेदार सतीश कुमार ने मोटर प्लेटून का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और कई स्थानों पर ताबड़तोड़ फायर कर कई लक्ष्यों को बर्बाद किया और नुकसान दुश्मन को भारी पहुंचाया। उनके द्वारा किए गए काउंटर बम्बार्डमेंट और काउंटर मोटर ऑपरेशन ने दुश्मन के मोटर ठिकानों को प्रभावी रूप से दबाकर दुश्मन पर सामरिक बढ़त दिलाए। अडिग संकल्प असाधारण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार सतीश कुमार।
0: Hands going up in a round of applause for Nayab Subedar Satish Kumar from the Dogra Regiment and our Honorable President pinning the Veer Chakra Medal of Gallantry on the proud chest of Satish Kumar.
4: शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र। लांस नायक मिनाची सुंदरम ए, तोपखाना रेजिमेंट, 34 राष्ट्रीय राइफल्स,
2: 29 शौर्य चक्र, 15 वीरता चक्र और
4: लांस नायक मिनाची सुंदरम ए कुलगाम के एक ऑपरेशन में आंतरिक घेराबंदी का हिस्सा थे। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की हताश कोशिश की और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसी भीषण गोलीबारी के बीच लांस नायक मिनाची को चेहरे और दाहिने कंधे पर भी गोली लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने विशुद्ध साहस, मन की दृढ़ता और असाधारण निशानाबाजी के परिचय देते हुए एक आतंकवादी को रोका और उसे भीषण नजदीकी गोलाबारी में मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने के लिए लांस नायक मिनाची सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। लांस नायक मिनाची सुंदरम ए।
2: 7 कीर्ति चक्रों में से पहला कीर्ति चक्र दिया जा रहा है लांस नायक मिनाची सुंदरम को।
4: नायक सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा पैराशूट रेजिमेंट।
3: नर्व्स ऑफ स्टील आर मेन एंड सोल्जर हैव दिस इज नायक सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा।
4: जम्मू एवं कश्मीर में एक तलाशी अभियान के दौरान नायब सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा ने 2 आतंकवादियों को एक नाला पार करते हुए देखा और तुरंत अपने दस्ते की स्थिति बदलकर आतंकवादियों को घेरने का आदेश दिया। तभी भागने के प्रयास में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आपने तुरंत प्रभावी गोलीबारी की जवाबी देते हुए एक आतंकवादी को घायल कर दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए आपने खुद को उजागर किया और दूसरे आतंकवादी पर निशाना साधा, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा आतंकवादी भी मौके पर ढेर हो गया। अद्वितीय वीरता, असाधारण साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कला के लिए नायब सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा को कीर्ति चक्र से सम्मान

0: किया जाता है। नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा।
1: And a round of applause from our Honourable Prime Minister, members of the Cabinet, dignitaries, for Naib Subedar Doleshwar Subba receiving his Kirti Chakra.
0: Major Ashdeep Singh, Kavachit Kaur, 1 Assam Rifles.
2: And now, the next Kirti Chakra.
0: मेजर अर्शदीप सिंह सीमा के नजदीकी क्षेत्र में एक विशेष गश्ती दल के अग्रणी थे, जब उनका गश्ती दल अचानक दुश्मन की गोलाबारी के चपेट में आ गया। उन्होंने त्वरित नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह
2: अद्वितीय वीरता और असाधारण नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह इस वक्त राष्ट्रपति के सामने अपना कीर्ति चक्र ग्रहण करते हैं।
1: Moments like these will be remembered by one and all present here and around the country. Group Captain Prashant Balakrishnan Nair.
0: Air Commodore Prashant Balakrishnan Nair एक योग्य उड़ान अनुदेशक तथा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। ये भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक है। इनको एक्सियोम 4 मिशन में एक स्टैंडबाय मिशन पायलट के रूप में चुना गया था, जहां इन्होंने प्राइमरी मिशन कर्मी दल के सदस्यों के साथ अत्याधुनिक मिशन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके प्रशिक्षण में जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस, स्पेस वॉक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज्ड स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस भी शामिल थे। इनके अदम्य साहस एवं असाधारण वीरता के लिए एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर।
1: The proud family with a round of applause proudly receiving the Kirti Chakra. This is Group Captain Prashant Balakrishnan Nair, flying captain, flying pilot in the Indian Air Force.
0: Captain Lalrin Omar Silo, Parachute Regiment.
2: और अब विशेष दल 4 पैराशूट के कैप्टन लाला रिनाउ साइलो आमंत्रित किए गए हैं कीर्ति चक्र के लिए।
0: कैप्टन साइलो को श्रीनगर इलाके में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने एक संदिग्ध गतिविधि देखी। मिनी आरपीवी द्वारा आपने खतरे का विश्लेषण किया और स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी के एक आतंकवादी की पहचान की। रणनीतिक संयमता दिखाते हुए आपने आतंकवादियों पर सटीक गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप भीषण गोलाबारी के बीच आगे बढ़े और एक खूंखार आतंकवादी को नस्ती की मुठभेड़ में मार गिराया। निर्भीकता साहस का प्रदर्शन करते हुए आपने बाकी आतंकवादियों को भी निष्प्रभावी कर दिया। युद्ध कुशलता, अद्भुत बुद्धिमत्ता और स्पेशल फोर्सेस की निपुणता का प्रदर्शन करने के लिए कैप्टन लालरिन ओमा साइलो को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन लालरिन ओमा साइलो।
2: तालियों की कड़कड़ाहट के बीच राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हुए कैप्टन साइलो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। कैप्टन साइलो को
3: अब शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। लांस दफादार बलदेव चंद अमट कौर, 4th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।
1: एंड नाउ शौर्य चक्र पोस्थमसली, अ वेरी पॉइंटेंट मोमेंट, द फर्स्ट चक्र, शौर्य चक्र गोइंग टू लांस दफादार बलदेव चंद फ्रॉम द अमट कौर, कमिंग फॉरवर्ड टू रिसीव हिज वाइफ एंड मदर।
3: लांस दफादार बलदेव चंद 19 सितंबर 2025 को कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा थे। सशस्त्र आतंकियों द्वारा अचानक किए गए प्राणघातक हमले के बीच घिरे अपने साथियों की रक्षा के लिए आप हथियारबंद आतंकी पर अकेले टूट पड़े। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भीषण हाथापाई के बाद इस शूरवीर सैनिक ने आतंकी से विदेश निर्मित पिस्तौल छीनकर अपने कई साथियों की जान बचाई एवं अपने दल को पुनर्गठित किया। सीने में गोली लगने से घायल होने के बावजूद आप आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए

0: अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस हवलदार बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवानी रनौत तथा उनकी पूज्य माता श्रीमती विजय कुमारी।
1: Our Honourable President walking towards the martyr's wife and mother to present the Shaurya Chakra posthumously to Lance Dafedar Baldev Chand. Hearts are heavy and overwhelming feeling, but our martyr leaves the family, the near and dear ones, with pride and honour.
0: वीर चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत, कांस्टेबल दीपक चिंगाखम सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत,
2: उप निरीक्षक

0: वीर चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत, कांस्टेबल दीपक चिंगाखम सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत।
1: उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक चिंगाखम की परिवार के सदस्य मरणोपरांत वीर चक्र लेने के लिए इस वक्त माननीय राष्ट्रपति के सामने।
0: उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चिंगाखम सीमा सुरक्षा बल की 7वीं बटालियन के दल के साथ जम्मू क्षेत्र में बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात थे। 7 मई 2025 की पूरी रात सीमा पार से मोर्टर द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के बीच उप निरीक्षक इम्तियाज ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करते हुए बंकर से बाहर आकर खतरे का जायजा लिया और अपने साथी कांस्टेबल दीपक चिंगाखम के साथ मिलकर अपनी दोनों लाइट मशीन गन्स के प्रभावी फायर द्वारा इसका सटीक जवाब दिया। मोर्टर का एक गोला फटने से शरीर का लगभग हर हिस्सा जख्मी होने के बावजूद आप दोनों ने आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने दल का निरंतर मनोबल बढ़ाया, जिससे शत्रु के मंसूबों को विफल किया जा सका। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, असाधारण साहस तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चिंगाखम को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी श्रीमती शहनाज आजिमा
1: और अब माननीय राष्ट्रपति अपने आसन से नीचे उतरते हुए ये मरणोपरांत पुरस्कार देते हुए
0: दीपक चिंगाखम की पूज्य माता श्रीमती चिंगाखम एवं मन देवी एवं पूज्य पिता श्री चिंगाखम गोविंद बिहारी सिंह।
1: ये एक ऐसा अवसर है, इतना भावुक अवसर होता है जब शहीद सैनिकों के परिजन राष्ट्रपति के हाथों सम्मान ग्रहण करते हैं और पूरा राष्ट्र उनके बलिदान को नमन करता है।
0: राइफलमैन सुनील कुमार, 4th बटालियन जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री मरणोपरांत।
2: The next of the kin of rifleman Sunil Kumar posthumously coming forward to receive the Medal of Gallantry Veer Chakra, a poignant moment when the entire nation stands beside the family of our great martyr, together sharing their
0: rifleman Sunil Kumar
2: and joy.
0: Sima Suraksha Bal ki 7th Battalion ke saath Sena ki samanvay tukdi ke roop mein Jammu Kshetra ki ek Sima Chowki par tainat the. 7 May 2025 सीमा पार से शत्रु द्वारा लगातार की जा रही भारी गोलाबारी के बीच चौकी की ओर बढ़ते दुश्मन के सशस्त्र पेलोड से उत्पन्न खतरे को भांपते हुए ये जांबाज सैनिक निडरता के साथ अपने बंकर से बाहर निकला और अद्भुत रणकौशल का परिचय देते हुए अपनी लाइट मशीन गन के सटीक प्रहार से उस घातक आयुध को निष्क्रिय कर दिया। प्राणघातक परिस्थितियों में इस शौर्यपूर्ण कार्य को अंजाम देते हुए गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। अटूट कर्तव्य निष्ठा तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती सुदेश कुमारी तथा पूज्य पिता श्री यशपाल।
2: The parents of rifleman Sunil Kumar awarding them the Veer Chakra posthumously. To the proud family saluting the mother for giving birth to such a brave heart.
0: अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर महार रेजिमेंट 1st बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत।
1: और अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया जा रहा है सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर के परिवार को। द महार रेजिमेंट एक राष्ट्रीय राइफल्स के है सिपाही।
0: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया।

0: साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से दो खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही है उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।
1: कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया जा रहा है सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर की पत्नी को। बहुत ही भावुक क्षण है जब माननीय राष्ट्रपति उनसे गले मिलते हुए गले लगाते हुए उनकी माता को बहुत ही भावुक होते हुए
2: A tearful mother, unable to bear the loss of her son, a great martyr.
0: Lieutenant Shashank Tiwari, Sena Seva Corps, 1st Sikkim Scouts, Maranoparant.
2: And now, the next of kin of Lieutenant Shashank Tiwari, posthumously, from the Army Service Corps, coming forward to receive the honor in the form of Kirti Chakra for their beloved. Greeting our honorable panelists, greeting the audience, the family.
0: उत्तर सिक्किम के दुर्गम पहाड़ी इलाके में चलाए गए एक ऑपरेशनल गश्त का स्वेच्छा से नेतृत्व संभाला। गश्त के दौरान उनका एक अग्निवीर स्टीफन सुब्बा संतुलन बिगड़ने से नदी में जा गिरा। अपने साथी को नदी की प्रचंड धारा में बहता देख इस युवा अधिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और नुकीली चट्टानों के बीच विकराल जल प्रवाह से जूझते हुए घायल होने के बावजूद अपने साथी को सुरक्षित किनारे तक धकेला। लेकिन तीव्र प्रवाह एवं गंभीर चोटों के कारण वो स्वयं को न बचा पाए। अंततः सैन्य धर्म के सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप अटूट बंधुत्व एवं त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही है उनकी पूज्य माता श्रीमती नीता तिवारी तथा पूज्य पिता श्री जंग बहादुर तिवारी।
2: A teary-eyed mother, a teary-eyed audience, the mother receiving a warm hug from our honorable president, wiping the tears. It's difficult for one and all to hold back the tears. Kirti Chakra posthumously for Lieutenant Shashank Tiwari.
1: राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक वातावरण देशभक्ति सम्मान और गौरव की भावना से ओतप्रोत दिखाई दे रहा है। समारोह अब समापन की ओर बढ़ता हुआ सभी जो और अब रक्षा सचिव माननीय राष्ट्रपति से समारोह समाप्त करने की
3: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए।
2: And now seeking the permission for a closure, the audience is rising for the national song and the national anthem.

0: Soulful tunes being belted out by the Maha Regimental Centre in our Honourable President, bowing to the audience with a namaste and slowly, gracefully interacting with the audience and heading towards the grand entrance of the Ganatantra Mandap. Glory, honour, duty and discipline are words which define events like the Defence Investitures Ceremony 2026 Phase 1, which is coming towards a beautiful, soulful, solemn closure. And one is reminded of the Sanskrit Shloka. At the moment, our other dignitaries, our Honourable Prime Minister, interacting with the members, audiences. And one is reminded of this beautiful Sanskrit shloka. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityur ma amritam.
1: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे एसवाई खान हिंदी में और ज्योति अहलावत अंग्रेजी में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we will also take calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember, listeners, that we do not address company-specific queries. You can call us with your queries on 2331-4444. 2331-0464 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers if you're calling from the landline or even from mobile. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai, jahan hum aarthik aur vyaparik khabrein aap tak lekar ke aate hain. Aaj somvar hai shrotaon. और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. हमें फ़ोन करने के लिए आप इन नंबर्स पे डायल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0464 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. और जब भी आप हमें कॉल करें श्रोताओं, तब अपने रेडियो सेट की आवाज़ थोड़ी धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्वालिटी के साथ हम एक दूसरे को सुन सकें. आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और हम सब के साथ चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद प्राची.
1: श्रोताओं, आइए पहले एक नजर डालें आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज डिक्लाइन अराउंड 1%. सेंसेक्स फॉल्स ओवर 700 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 23,150. मेजर एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसीज फॉल एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज अमिड रिन्यूड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स.
1: घरेलू शेयर बाजार में 1% की गिरावट आई. सेंसेक्स 700 अंकों से अधिक लुढ़का. निफ्टी 23,150 के नीचे बंद हुआ. एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में भी गिरावट आई और बढ़ती भू राजनीतिक चिंताओं के कारण कच्चे तेल के वैश्विक स्तर पर दाम बढ़े.

0: And before we begin the program, a word of caution for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, आइए अब जान लेते हैं कि आज पूरे दिन के अंतराल में दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक लगभग 1% फिसले। कमजोर वैश्विक संकेतों और अधिकांश क्षेत्रों में बिकवाली के कारण ये गिरावट आज दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 244 अंक गिरकर 23,123 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक लगभग 1.5% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग 2% लुढ़ककर बंद हुए। इससे पहले पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और एशियाई बाजारों में मंदी के चलते बाजार भी गिरावट के साथ खुले। सत्र के अधिकांश समय सूचकांक दबाव में रहे और शुरुआती नुकसान की भरपाई नहीं कर पाए।
0: Benchmark domestic equity indices ended around 1% lower today amid weak global cues. The BSE Sensex shed 719 points to close at 73,524. The NSE Nifty slipped 244 points to settle at 23,123. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid Cap 100 index fell 1.4% and the Small Cap 100 index settled 1.9% down.

0: Earlier today, markets opened with a sharp gap down amid escalating tensions in West Asia, rising crude oil prices and weakness in Asian peers. Markets remained under pressure for most of the session, with efforts to trim early losses failing to gain traction.
1: Sensex में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में Eternal 3.2% से अधिक, Indigo 2.5% से अधिक और Mahindra & Mahindra के शेयर 2.5% गिरे. वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में सबसे पहले पावर ग्रिड 1.8%, टेक महिंद्रा 1.3% और BEL के शेयर 1.2% बढ़े.
0: A broad-based sell-off was observed across sectoral indices at the BSE, barring hospitals, which gained over 1%. All of the sectors ended with losses. Among the top laggards, realty shed almost 2.6%, metal fell over 2.4%, and telecommunication dropped 2.3%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 3,117 companies declined. Shares of 1,249 companies advanced, while shares of 171 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 77 पैसे कमजोर होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ. डॉलर सूचकांक, जो अन्य छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वो दिन के कारोबार में 99.98 पर कारोबार कर रहा था. भिलाई से हमारे साथ श्रोताओं हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं. इनका नाम है रवि नारायण. कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. महोदय, अपना सवाल पूछिए.
2: नमस्कार मार्केट मित्र
1: जी.
2: अभी जो अपन जो क्रूड के बारे में जान रहे थे, क्रूड ऑयल एक इशू है और हमारे प्रधानमंत्री महोदय अक्सर बोलते हैं कि अपन जो है इसके ऊपर डिपेंडेंसी हमको कम करना है करके, क्योंकि 50% जो है हमारा जो पावर जो है उस पर इस पे क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी हमारी कम करते जा रहे हैं. और एक तरफ जो हमको क्रूड मिल भी रहा है हमारे ईस्टर्न इसमें अंडमान निकोबार के उसमें, तो मेरा आपसे सवाल है मैडम कि आपके असेसमेंट के हिसाब से हमारा क्रूड पे डिपेंडेंसी कितने जल्दी हम उसे गेट रिड ऑफ हो जाएंगे, खासकर जो वेस्टर्न जो क्रूड है उससे. और दूसरा हमारा क्रूड पे टू इंटायर डिपेंडेंस जो है कम करके जो है हमारी जीडीपी में उसका क्या योगदान रहेगा, हम यदि क्रूड पे डिपेंडेंस कम कर देते, आपके असेसमेंट के हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ. थैंक यू.
3: रवि जी धन्यवाद. देखिए क्रूड में अगर आप देखें तो हमारी जो डिपेंडेंस है काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 95% तक है. तो इसको हम सरकार की तरफ से बहुत एम्फसिस किया जा रहा है. ग्रीन ट्रांजिशन का भी एक उद्देश्य है, एक टारगेट प्रधानमंत्री ने दिया हुआ है, तो कोशिश सरकार की तरफ से काफ़ी हो रही है. डिपेंडेंस जो है कम होने में और उसको काफ़ी हद तक घटाने में, कि जब हमारी पूरी तरह निर्भरता कम हो जाए उसमें थोड़ा वक्त लगेगा.
0: जी
3: जी.
0: Let's take the next story. But before we take the next story, you know, Deepshikha, let's have a look at how the markets behave today. Of course, a major, more than 1% downfall. And we know that, of course, the geopolitical situation being what it is, we saw a war again, you know, breaking out between Iran and Israel. And of course, the Asian markets played a very crucial role. What was it that spooked the Asian markets? Of course, and before you know you answer that, let me just ask, because we are talking about Asian markets, जी. Let me just request Prachi to give an overview of the Asian markets.
1: बिल्कुल श्रोताओं, आइए रुख करते हैं पहले एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट आई. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 8.3% गिरा. इससे पहले तकनीकी शेयरों में भारी बिकवाली के कारण दक्षिण कोरिया के बाजार के खुलने के कुछ ही मिनट के अंतराल में सूचकांक लगभग 9% गिरे, जिसके कारण 20 मिनट के लिए कारोबार को रोकना पड़ा. उधर जापान का निकेई 3.8% से अधिक, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.7%, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 1.2% अधिक नीचे आया. प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों की अगर बात करें तो यहां आज मिला जुला रुख देखने को रहा. अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स लगभग 0.5% नीचे था. लंदन का फुटसी 0.2% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया और फ्रांस का कैक लगभग स्थिर रहा.
0: I'll come back to my question to you, Deepshikha, later on, but we have

0: ऐसा हुआ है कि मैं आपको बीच में रोक रही हूँ कि हमारे कॉल्स आते हैं और सबके ये सवाल होते हैं कि हमने इस सेक्टर में पैसा लगाया, ये इतना प्रॉमिसिंग सेक्टर है और हम अपना पैसा लूज करें, तो व्हेन वी विल कूप दिस?
1: देखिए, टेक सेक्टर और आईटी सेक्टर जो है, इस पर काफ़ी हद तक जो है असर आएगा, और इसीलिए ये अगर आप देखेंगे इस क्षेत्र के जो स्टॉक्स हैं उनमें अनिश्चितता काफ़ी समय से बनी हुई है, क्योंकि और कितना असर आएगा, अभी ये बहुत सारे अननोन्स हैं जो अभी सामने नहीं आ पाए हैं कि इससे काम में उनके बढ़ोतरी होगी, और ये जो टेक कंपनीज हैं इन्होंने अपना एआई के क्षेत्र में कितना अपना काम शुरू किया है, कितना अपना बिजनेस वो डायरेक्शनली चेंज कर रहे हैं ताकि वो भी नए क्षेत्र में जा सकें। तो जो प्लेयर्स हैं जो इस एआई को यूज़ कर लेंगे और इसमें इसका बिजनेस में एंटर कर पाएंगे, वो प्लेयर्स आगे मेरा ख्याल है कि लंबी रेस के घोड़े होंगे। बट ये जो एक फ्लक्स वाला सिचुएशन है, अभी क्लैरिटी नहीं है कि एआई का इम्पैक्ट कितना होगा, क्या ये बबल है, ये बर्स्ट हो जाएगा, तो ये अभी 3-4 महीना जो है जब तक ये हाइप चल रहा है, ये जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे आईपीओज आने वाले हैं उसकी वजह से बहुत हाइप क्रिएट हो गया है, तो ये हाइप किस हद तक जाता है वो देखते हैं, 3-4 महीनों में थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा और उसके साथ साथ इन कंपनीज का क्या परफॉर्मेंस रहता है।
2: जी, एंड बिफोर वी टेक द नेक्स्ट स्टोरी, लेट मी रिपीट आर नंबर्स ऑन विच कॉलर्स कैन कॉल अस टुडे और विद देयर क्वेरीज। द नंबर्स आर 2331-4444, 2331-0464 एंड 2371-7106, एंड ऑफ कोर्स listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011. We are waiting for your calls. And let's now move on to the next story. SEBI Chairman Tohin Kanta Pandey today said that capital markets are increasingly emerging as a core avenue for household savings and wealth creation in India. Addressing the ICICI Securities India Investor Conference 2026, Mr. Pandey informed that India has around 145 million investors in the securities market, growing at over 20% annually. He further noted that mutual fund assets have surged from about 12 lakh crore rupees to over 80 lakh crore rupees over the years, adding that market capitalization has grown from 69% of GDP a decade ago to about 128% today. Mr. Pandey further informed that equity issuances touched 4.5 lakh crore rupees in financial year 2026, while 366 IPOs raised around 1.9 lakh crore rupees during the year. Stating that India remains one of the fastest growing major economies despite ongoing geopolitical developments affecting inflation, trade flows, exchange rates and external balances, the SEBI chairman said India's economic rise is not only about higher growth numbers, but also about the formalization of the economy, financialization of savings and growing trust in institutions. You know, Deepshikha, it's very interesting that while we're talking about the way the markets fell today more than 1%, and we have the story, you know, coming in where the SEBI chairman is saying that the capital markets are increasingly emerging as the core avenue for household savings and wealth creation in India. So that does go to show that, you know, the investor, a common man, has the trust in the Indian markets, you know, and the way the Indian markets are performing. So despite all this volatility that is happening, despite all these ups and downs, because of whatever reasons, external reasons, people have intrinsic, you know, they have this intrinsic trust in the markets.
1: Absolutely, Anubha. If you actually see, domestic investors have become such a force in the Indian capital markets, and foreign investors, despite, you know, they've been pulling out, but yes, the domestic investors have been sort of extending support going forward.
2: Yes.
0: Anubha, is beech Noida se hamare saath ki Ravindra jud rahe hain. Mahoday, karyakram mein aapka abhinandan, kripya apna sawal poochhe.
3: Yeah, good evening, madam.
1: Good evening, Ravindra ji.
3: Market mantra. Actually, I have one question regarding the electronic gold receipts. So, though it is declared in NSE, how to trade in the DMAT account like either Zerodha or Grow Apps? Is started or when it will be expected?
1: You will have to study these apps and how these function and their conditions and accordingly make calls.
2: You know, let's get back to what we were discussing, Deepshikha, about the Indian capital markets. So you were

0: talking about, you know, the fact that we were talking about the how the trust factor is still there. Mm. What do you think has contributed to this change also in the way Indians have, you know, start the savings mindset? Because earlier the, you know, mode of savings would be you would invest, you know, save, have a bank FD, or, you know, buy some government policies, things like, you know. But now more and more people are, you know, investing in the capital market. So what does it, what are the factors that have contributed to this change in mindset?
1: Anubha, if you actually, you know, see, and, you know, the previous caller also mentioned, you know, a lot of these apps which have come around. So the trading and the whole process of onboarding a customer has become definitely much easier. It's become, you can trade from your mobile. So you've seen a lot of younger people, yes, you know, first, who are in their first jobs also, they've gotten attracted to the markets. Systemic investment plans, they've become a very strong this thing. So I think in terms of domestic investors looking at markets, the fact that they just wanted to put their money in FDs some time back, or, you know, there were not many avenues. The markets, I would say, has become very democratized in that way. Mm-hmm. Yeah, very secular. It's reaching out to all strata, you know, and they are able to participate in the markets with ease.
2: और जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर अब हम वैश्विक बाजारों से एक कंपटीशन ले रहे हैं और उसमें ऐसा लगता है कि पहले ऐसा होता था अनुभव, हम देखते थे कि धन को संचय करने की बड़ी चाहत रहती थी लोगों को कि अपने घरों में संचय कर लें, पोटली में बांध कर रख लें। लेकिन अब जो धारणा बदल गई है कि धन जितना चलायमान हो, मार्केट में जितना सर्कुलेट करे, उतना ज़्यादा वृद्धि होती है, देश के लिए भी, आपके लिए भी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिक के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये पहल निवेश के लिए तैयार औद्योगिक आधारभूत ढांचा बनाकर भारत के उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक बदलाव लाने वाला उपकरण है। ये कितना बेहतर है, आप मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी दीपशिखा जी, भव्य पोर्टल पर।
1: देखिए, ये एक अगर आप देखें कि सरकार की तरफ से जो कोशिश हो रही है कि एक वन स्टॉप शॉप हर चीज के लिए बनाया जाए
0: जी,
1: तो ये उसी दिशा में एक कदम है कि एक एक पोर्टल बना दिया गया है जिसमें आपको सारी चीजें मिल रही हैं। एक इन्वेस्टर के लिए, एक निवेशक के लिए एक बहुत बड़ा कहना चाहिए, बहुत आसान हो जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
2: सबसे बड़ी बात कि इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी जिक्र किया गया है कि
1: बिल्कुल
2: पारदर्शिता है, तो जहां पारदर्शिता है वहां विकास है, वहां विश्वास है।
1: जी बिल्कुल।
0: लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टोरी। इंडियाज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन फ्रॉम $70 billion इन द फाइनेंशियल ईयर 2014-15 टू अ रिकॉर्ड $122.43 billion इन FY 2025-26, मार्किंग अ रिमार्केबल 12-year growth journey, officials said today at the 42nd Western Region Export Excellence Awards organized by the Engineering Export Promotion Council India in Goa. Addressing the gathering, Vimal Anand, Joint Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, said engineering goods now account for nearly 28% of India's merchandise exports, making the sector the largest contributor to the country's export basket. He said the growth was achieved despite geopolitical uncertainties and global supply chain disruptions, supported by initiatives such as the production-linked incentive PLI scheme, free trade agreements, FTAs, and the recently launched export promotion mission with an outlay of 25,060 crore rupees for 2025-31. Deepshikha, the fact that, you know, engineering exports now form the biggest chunk of our export market, you know, for India's export, what does it say about the fact that, you know, when India is trying to become the manufacturing hub, you know, and the government is trying to promote manufacturing in a big way in the country, what does this show and how heartening news this is?
1: Absolutely, Anubha, if you see the export numbers, even the overall numbers, dis-

0: ஷர்மா. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए. लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना है तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा.
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है. इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया. नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा. भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है. भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है. मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है. सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है. नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है. पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब शामिल हो गया है. ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया. न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है. बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ. निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया. भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

0: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर

0: ये बात। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं, भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका, प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
3: नमस्कार, यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी, और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी, यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में

0: भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी। तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
1: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसा आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर तीन कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर

0: जाती है। और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद है, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहां आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है, और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोलें सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर टीवी चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, इतनी गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरपल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये PTI के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ा है अभी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो अडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आया ही नहीं थे, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाए।

0: पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது திரைகானம். எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் சில நொடிகளில் தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में

0: सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित

0: खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है।

0: वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
1: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
3: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जे पी एस डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, और उसके अलावा 2331-0481, 2371-7117, या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
0: प्रियंका जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफ़ी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफ़ी आगे था। केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की, या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
1: जी।
0: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना, चित्र रखना है, तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है, किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाने जाते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को सही तरह से खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज़्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पर उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी, और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज़ करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, तो हमें किसानों को ज्ञान ये समझाना है कि मिट्टी की जाँच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित किया जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूँगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इसके साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सबको साथ लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको भी रिसाइकिल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो
1: जी। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम
1: जी,
2: सब्जियों को प्रणाम
1: जी।
0: नमस्कार। नमस्कार जी।
2: सब्जी मेरे कुछ जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं हैं, उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रबी, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: ब्रह्मज्योति, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज़्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि ज़मीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि जैसे पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उससे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफ़ी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं और आजकल मोटे अनाजों की भी काफ़ी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनसे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को और हम काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफ़ी संभावना है और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ ज़मीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं।

0: कम खर्चे पे भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे पानी अगर कहीं ज़्यादा तो वहाँ केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं, और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है, यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं, और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार में उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है, जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना है, जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी मिल सके।
1: जी, आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं, तो वो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
2: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादातर किसान भाई एक या दो या ज़्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन क्या है ना, पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए, लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है, और वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। अभी क्या है ना, हमारी ज़्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे, तो वहाँ पे क्या है ना, एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है, और उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
1: डॉक्टर, आपसे बात जारी रखेंगे। पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश जी, राकेश बात कर रहा हूँ, कोट खाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद
3: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
1: डॉक्टर मीना,
2: तो राकेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया, वो क्या है ना, ज़्यादातर आपकी मिट्टियाँ अम्लीयता हैं, और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है, और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है, और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना, कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है, मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है, बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन, ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है, और इसकी कमी बहुत ज़्यादा है, और किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा,
1: तो सॉइल टेस्टिंग समय समय पर बहुत जरूरी है जो किसान कराते रहें। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं, योगेश झांगड़े जी।
4: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
4: जी, हम योगेश झांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी,
4: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
0: योगेश जी, जो भी हमारे फसल के अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के उसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं, और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है, और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूँगा कि अपनी खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या

0: सुडोमोनास ये जैविक चीज़ें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है, और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज़्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूँगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें, तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो जी अनिल जी।
2: मैम हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
0: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूँगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है, और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है। इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में, तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी, और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज़्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हों और किसानों के जो संगठन बने आजकल किसान उत्पादक संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार जी।
3: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए?
1: जी डॉक्टर मीना।
4: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा जो, क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले दो मीटर छोड़ना है, और जितना ओपन है इवन पेड़ और बिल्डिंग, कुएं, जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहाँ से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है। और मिट्टी की गहराई, जैसे जो आपकी सीजनल फसल हैं जो एक सीजन में ख़त्म होती हैं, उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले ली और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहाँ से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
1: जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, और समय समय पर श्रोताओं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है, तो उसका लाभ ज़रूर लें। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए?
4: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी

0: आए, धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, या कभी हम ऑर्गेनिक मेन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना, धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं। और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे, जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का
1: जी
0: जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे, जैसे पूसा डिकम्पोजर है, ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं, उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है, और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन,
1: जी
0: तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है, यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा अवशेष या हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएँ और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएँ।
1: डॉक्टर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद, मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में? डॉक्टर नवाज,
2: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक खाद भी बढ़ाती है, और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफ़ी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पे इसका उपयोग करना चाहिए, और अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, दलहनी फसल काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक खाद भी बढ़ाने में मदद करती है, और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉयल में इंकॉर्पोरेट कर देते तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितने भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है, और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं, जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो उनका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से, एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाए, साथ में उसके गैस का उपयोग भी करें, तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जाता है उसकी भी बचत करेगा, और हमारे गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गाँव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से मैं गाड़ियाँ भी चला रहे हैं तो उसका भी काफ़ी बड़ा लाभ हो सकता है, और जबकि ये हमें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जो कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीज़ों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद हैं जो उनके माध्यम से दे सकते हैं, या कुछ जैविक ऐसी भी चीज़ें हैं जो फफूंद नाशक है, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सीडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है, हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कि हम कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाएं। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है, तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को भी बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है, तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले ही अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है, तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
3: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न है
1: जी,
3: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
2: मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता है, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज़ से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे यहाँ ब्लैक समेटिक गेहूं में बीमार

0: आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है। और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से, सही फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा। तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगा, बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार के लिए दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है, जैसे हमने रुपाई करनी है, तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं और साथ साथ में इसको प्योद को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं, जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजूला है, तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज़्यादा लाभ देती हैं, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
2: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी।
2: प्रश्न ये है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजातीय लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
3: जैसे इंद्रभान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भाग है तो वहाँ पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहाँ पे एरिया में ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनके अवेलेबलता मतलब वो वैसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है। और जैसे छत्तीसगढ़ में है या एमपी में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के जो संस्थान हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुँच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
1: वहाँ पे ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिसपे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है, जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
0: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो गवर्नमेंट भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहाँ से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पे जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1551551। तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह एक पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989। तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपको यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे 0112584 1670, ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और जो भी हमारे एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ, खासकर अगर मिसार का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन की और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है, लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहाँ पर डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है
1: जी। हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
4: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी।
4: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए, और धरती कहे पुकार के, ये भी
1: जी,
4: एक
1: जी राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछे।
4: जी जी, जो शहर का वेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है, और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना
1: जी? डॉक्टर मीना,
3: हाँ तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है, और हमारे जो सरकारें हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा

0: है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना, थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ को पहले हम उसका क्या है ना, जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जाँच करा लें, क्योंकि जाँच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है, और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई या अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में ये सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि उर्वरक और जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2: देखो एक्सेस उर्वरक, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ हमारे अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है। जब हम उसको सही, हम फसल से ज़्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है, लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और हमें ये भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है। तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत सरकार के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह पे वेरी करेगी, और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं उनके माध्यम से मिलकर उसको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित करके होकर एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की ज़रूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझें, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सम्पन्न करने की। नमस्कार।
2: नमस्कार जी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य से बाहर क्यों न रहें। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कांग्रेस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी।

0: श्री खड़गे ने कहा कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता की कमी हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुनने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। और खेलों में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक पारी और 300 रन से हरा करके अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: or molten steel from the ladle into the tandish. The injured have been admitted to the hospital and are undergoing treatment. Rashtriya Ispat Nigam Limited has initiated an investigation into the accident. Union Steel Minister H.D. Kumaraswamy is visiting the Vishakhapatnam steel plant to meet the injured and inspect the accident site. India has secured continued market access for exports of aquaculture products, including honey and eggs, to the European Union beyond September this year, under the amended EU regulatory framework. The European Union has included India in its list of authorized countries eligible to export these products after new regulations aimed at addressing concerns related to antimicrobial resistance. The Commerce and Industry Ministry said India's inclusion in the authorized list will ensure uninterrupted access for Indian exporters to the European markets. The Ministry of Ayush today organized a radio jockey and influencer meet in New Delhi, bringing together leading radio personalities, digital influencers and content creators to strengthen public participation in the nationwide outreach program for International Day of Yoga 2026 celebrations. Addressing the gathering, Joint Secretary of Ayush Ministry, Alarmilan Mangaidi, highlighted the remarkable journey of the International Day of Yoga since its inception in 2015 and emphasized its evolution into one of the world's largest public health movements. She said that this day is observed across more than 180 countries. India has deeply regretted the renewed attacks in West Asia as Israel and Iran traded fresh missile attacks today, triggering escalation in the region and jeopardizing the ceasefire. India has called on all parties to immediately de-escalate tensions and ensure that civilians are not harmed. In a statement, the External Affairs Ministry also appealed to conclude ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The Indian Embassy in Iran has also advised Indian nationals to avoid any travel to Iran in view of the recent developments in the region. India recorded their biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs on the third day of the one-off test in New Chandigarh today. The win surpassed India's previous record Test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance that saw them take 15 Afghan wickets on the third day. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। भारत ने इजराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, करीब 32 लोगों की मौत और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश की रिफाइनरियों और गैस प्रसंस्करण इकाइयों में कल लगभग 53,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। ये संकट से पहले के स्तर की तुलना में लगभग 60% अधिक है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सुश्री शर्मा ने बताया कि इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 380 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। अब तक किसान लगभग 86 लाख मीट्रिक टन उर्वरक खरीद चुके हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने मीडिया को बताया कि दोपहर में जहाज एमटी वैरी वैक्स में आग की सूचना मिली थी।

0: जहाज में 24 भारतीय कर्मी सवार थे। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। अरब सागर में आज एक भीषण समुद्री आपातकाल की स्थिति बिना किसी जानमाल के नुकसान के समाप्त हो गई। भारतीय चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता के बीच टैंकर एमटी मैरीवैक्स से 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान के तट पर चलते समय इस जहाज के इंजन रूम में धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब लेबनान और ईरान पर इजराइल के हमलों और ईरान की जवाबी मिसाइल हमलों के बाद पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। हालांकि ईरान ने सैन्य कार्रवाई रोकने की घोषणा कर दी है और युद्ध विराम के लिए राजनयिक कोशिशें भी चल रही हैं। फिर भी कमर्शियल शिपिंग रूट और इलाके में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। समुद्री सुरक्षा एजेंसियां टैंकर पर हुए हमले की वजह की जांच कर रही हैं, जबकि इलाके की सरकारें तेजी से बदलती सुरक्षा स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि ईरान और इसराइल तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में हमलों और जवाबी हमलों के कारण तनाव काफी बढ़ गया है। श्री ट्रंप ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष का स्थायी समाधान निकालने के लिए शांति समझौते पर अंतिम दौर की बातचीत जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही कोई सकारात्मक नतीजा निकल सकता है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही या गलत कदम समझौते की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि समझौता होने तक अमरीका की ओर से ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध और दबाव जारी रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि समझौते की दिशा में बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। ईरान के दक्षिण पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत में करून पेट्रोकेमिकल कंपनी पर आज इसराइल ने हवाई हमला किया। ईरान की एक समाचार एजेंसी के अनुसार हमले में कंपनी के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। ईरान के पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन संगठन ने बताया कि खुजेस्तान के बंदरगाह शहर बंदरे महाशहर में मौजूद सभी कर्मचारियों को सुरक्षित रूप से पहले ही निकाल लिया गया था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के तहत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध हो जाएंगे। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करते हुए बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने कहा कि इस कदम से निर्यात वृद्धि दर बढ़ने, भारतीय व्यवसायों के लिए अवसर उपलब्ध होने और भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में आज सुबह रिएक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इससे लगभग 32 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। भूकंप से जनरल सैंटोस शहर में कुछ इमारतें ढह गईं और प्रमुख बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। फिलीपींस के मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप पर स्थित सारंगानी प्रांत का मासिम शहर था। ये शहर 7 लाख की आबादी वाले जनरल सैंटोस के पास स्थित है। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी और उत्तरी मुलुक प्रांतों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिलीपींस में आए भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस कठिन समय में भारत फिलीपींस के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ब्रिटेन के लीड्स में कश्मीरी प्रवासी एकत्रित हुए। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा नागरिक स्वतंत्रता के दमन और लोगों के खिलाफ बल प्रयोग का आरोप लगाया। पाकिस्तान के संघीय राजस्व बोर्ड FBR ने चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में लगभग 684 अरब रुपए के राजस्व घाटे की घोषणा की है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं FBR पर लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इस बीच FBR ने दावा किया कि ये गिरावट मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के कारण आई है। वहीं आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्व लक्ष्यों को साल दर साल पूरा

0: कर पड़ने का कारण केवल बाहरी कारक ही नहीं हो सकते। लातविया के पूर्वी इलाके रेजेकने में और लुइजा के ऊपर हवाई अलर्ट के बाद नाटो के लड़ाकू विमानों ने एक ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन को नाटो के बाल्टिक हवाई पुलिसिंग मिशन के तहत काम कर रहे फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने रोका। पिछले महीने एक ड्रोन ने लातविया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था, जिसके कारण लातविया के रक्षा मंत्री एविका सेलिना ने इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों के अनुसार रूस ने बाल्टिक हवाई क्षेत्र में यूक्रेन के ड्रोनों को रोकने की कार्रवाई तेज कर दी है। इस बीच ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुई चर्चा के बाद यूक्रेन और रूस से के बीच सीधी बातचीत के लिए समर्थन व्यक्त किया है। भारत ने अफगानिस्तान को न्यू चंडीगढ़ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। एक रिपोर्ट।
1: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन का विशाल स्कोर बनाकर घोषित कर दी थी। भारत के लिए इस पारी के हीरो कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल रहे। गिल ने 126 और राहुल ने 100 रन की शतकीय पारी खेली। अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई। टीम के लिए रहमत शाह ने सर्वाधिक 60 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला मैच खेल रहे मानव ने 6 विकेट झटके। इसके बाद भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को फॉलो ऑन खेलने के लिए आमंत्रित किया, जहां अपनी दूसरी पारी में भी अफगानिस्तान टीम 112 रन पर सिमट गई। भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 4 और कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। मानव सुथर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: तीरंदाजी विश्व कप का तीसरा चरण कल से तुर्की के अंताल्या में शुरू होगा। इस चरण में भारत के उन सभी 12 तीरंदाजों पर नजर रहेगी जो 2026 एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, करीब 32 लोगों की मौत। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Abhineet Shukla with the World News. The headlines. New Delhi calls for immediate de-escalation of tensions as Israel and Iran exchange fresh strikes. India secures continued market access to export aquaculture products, honey and eggs to European Union beyond September this year. At least 32 people killed after 7.8 magnitude earthquake hits Philippines. And India records biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs in New Chandigarh. And now the news in detail. India has deeply regretted the renewed attacks in West Asia as Israel and Iran traded fresh missile attacks today, triggering escalation in the region and jeopardizing the ceasefire. India has called on all parties to immediately de-escalate tensions and ensure that civilians are not harmed. In a statement, the External Affairs Ministry also appealed to conclude ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The Indian embassy in Iran has also advised Indian nationals to avoid any travel to Iran. It has also advised the Indian nationals currently present in Iran to exit the country by available means of transport. Israel today carried out an airstrike on an Iranian petrochemical facility in Iran's southwestern Khuzestan province. No casualties have been reported so far. However, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, that is IRGC, said its aerospace forces targeted Israel's Nevatim and Tel Nof air bases in response to Israel's missile attacks on several radar sites in 3 locations in Iran. It added that all the IRGC's combat and operational units are fully ready to carry out operations on all fronts. The clashes came a day after IRGC's aerospace forces launched ballistic missiles at the Ramat David air base in northern Israel in response to Israel's attack in southern Lebanon. Explosions were also heard in west of Tehran, 2 in the central province of Isfahan and 1 near Tabriz, the capital of the northwestern East Azerbaijan province. Meanwhile, US President Donald Trump has said

0: ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன்ட் ஃபார் த நியூஸ் இன் ஹிந்தி.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है. ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की. बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके. इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं. वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे.

0: लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: women to operate as a pesticides, help them in modern farming,
1: Yes.
0: lowering the cost, because agriculture, we know, remains a labor-intensive sector.
1: Yes.
0: And increasingly, the hands get costly, because when you employ more people, obviously the farm cost goes. So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze the creation of post-harvest management infrastructure, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean, reforms within the sector that the government is looking at the problems that have been affecting this particular sector.
1: ओके मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं. जो मैंने अभी मिस्टर आनंद, मिस्टर प्रसाद से पूछा, वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है, जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी फिगर्स में, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख 2-3 इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन?
2: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था, वो है एमएसपी का फिक्सेशन. पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था. आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
1: जी,
2: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा. लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है सबके सामने. 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है. शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा, ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है. कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है. और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है. चना का देख लीजिए, चना ऊपर है. व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है. इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा, मतलब 50-100 रुपये नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहाँ पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस. तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है.
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को.
2: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं, वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा
1: जी,
2: तो
1: जी.
2: और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है. इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है. एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो तीन फार्म लॉज लेके आए थे, कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया. जो भी चीजें हैं, फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे
1: जी,
2: कोई भी स्कीम हो.
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमिटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है, और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे.
3: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में.

0: अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, वो 26.3, यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163%, यानी 163%, 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी, अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में, जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया, जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है।
1: जी
0: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी, और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद, और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कहीं नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना, और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए, और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई, जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है, और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूल चूल परिवर्तन किया जा रहा है। और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया के तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था,
1: जी।
0: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी, उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुनो जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो

0: एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं और गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के DBT यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं
1: जी।
0: अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस, और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है। ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
0: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाहर लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2,00,000 करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
1: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल।
2: देखिए जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
1: जी।
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
1: सो पैक्स जो कह रहे कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी
2: क्रेडिट सोसाइटीज जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपी

0: बीजेपी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी, उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो
1: जी
0: एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके
1: हाँ
0: माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे
1: जी
0: यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड, और वही डिजिटाइज्ड है। यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं, तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो
1: हाँ
0: फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए,
1: जी
0: यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया, एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए, और वो
1: जी
0: फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी
0: आप कुछ
1: जरूरत के
0: ऐसे
1: अनुसार
0: चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है।
1: जी
0: चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है, कंप्रेस बायोगैस में,
1: जी
0: और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और
1: जी
0: ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टरबाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही हैं। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये
1: जी
0: फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं 10,000,

0: कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
1: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे, लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहाँ पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
0: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओस होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
1: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओस को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी। उनको बिजनेस बढ़ाना है और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
0: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
1: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं और अपने फार्मर को, कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं। तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
0: So that collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years, can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
1: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past 2 decades or so, and urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range, right. And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also

0: ஆல்சோ பி காஸ்ட்லியர் ஃபார் த கன்சூமர்ஸ். ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் தியோரி தட் யூ சப்சிடைஸ் த இன்புட் to some extent,
1: okay,
0: so that the end product also becomes cheaper for the consumers and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार के वी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
6: இதுவரை மத்திய அரசின் 12 ஆண்டு நிறைவு குறித்து பல்வேறு கருப்பொருட்களிலான சிறப்பு இருமொழி நிகழ்ச்சி தொடர் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். பங்கேற்றவர்கள் வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை செயலாளர். நேரம் 11:45, 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசையில் நேர்கள் இனி கேட்டு ரசிக்கலாம் திரைகாணம். நிகழ்ச்சியின் முதலில் நினைத்ததை முடிப்பவன் படத்திற்காக TM சௌந்தரராஜன் பாடிய பாடல்.

0: திரைகாணம் கேட்டீர்கள். இனி தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அருண் குமார். राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुँच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।

0: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। ममता बनर्जी ने के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
0: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीबी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

0: இதுவரை நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சியில் போலீஸ்காரன் மகள், காத்திருந்த கண்கள், சாரதா படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டு ரசித்தோம். இனி தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அருண்குமார். राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: बिजनेसेस आरएनडी एंड इनोवेशन ओरिएंटेड बिजनेसेस।
1: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में लगभग 5,00,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 25,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000

கண்ணு, செல்ல தாத்தா, நல்ல தம்பி, வெள்ளக்கட்டி, சுட்டி பையா.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। वहीं केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुँच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। क्रिकेट में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ होगा। भारत इस महीने की 14 तारीख को एजबेस्टन में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ महिला T20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। वहीं केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मेक्सिको की खाड़ी में कल देर रात 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 28 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप का केंद्र क्यूबा के पश्चिमी तट के पास था। भूकंप के झटके क्यूबा, मेक्सिको और अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के कई इलाकों में महसूस किए गए। हवाना और आसपास के क्षेत्रों में इमारतें हिलने लगीं और लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कम हो गई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र जैन ने महाराष्ट्र में 18 जून को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। यह उपचुनाव सुनेत्रा पवार के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद कराया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुए भीषण आग दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए हैं। इस्पात मंत्रालय के अनुसार अत्यधिक गर्म पिछले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान यह हादसा हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards during the defense investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. The President conferred 7 Kirti Chakra, 15 Veer Chakra and 29 Shaurya Chakra to the personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police during the ceremony. Sub-Inspector Muhammad Imtiaz, along with Constable Deepak Chengakum of BSF, who laid down life in the line of duty at the international border in Jammu, were awarded Veer Chakra posthumously. In Andhra Pradesh, 8 people were killed while 6 others